स्वागत है आप सभी का फिर से भोर सुहानी में। सुबह सुबह जब हम चाय की चुस्की लेते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में आज के दिन भर की भाग दौड़ का नक्शा बनने लगता है। जी हाँ, पूरे दिन भर में हमारी क्या दिनचर्या रहने वाली है, हम क्या काम करेंगे, किस समय हमें बाजार जाना है, किस समय हमें बच्चों को लेना है, किस समय हमें अपने ऑफिस में जाना है, वहाँ जाकर क्या काम करना है, पूरा का पूरा ब्यौरा। बाप रे, इतनी बातें, इतने काम कि मैं तो बोलते बोलते थक जाऊँगी। खैर, इस ब्यौरे को आप दिमाग में तो रखिए, लेकिन साथ ही साथ अपने आप को भी इस खूबसूरत सी सुबह में भाग दौड़ में शुरू करने से पहले सिर्फ अपने आप को सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट दीजिए। जी हाँ, क्योंकि आप बेहद खास हैं। आप हैं तो हम हैं। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर आपके साथ हैं हम, आपके दोस्त, आपके हमराही। भोर सुहानी लेकर आपके साथ हूँ रूपा धवन। तो जुड़े रहिए इसी तरह हमारे साथ और आज की भोर सुहानी सुनते रहिए गीतों से लबरेज ये कार्यक्रम। एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह का संचार करती आज की भोर सुहानी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात।

कहते हैं कि जैसी हमारी सुबह होती है ना, वैसा ही हमारा पूरा दिन गुजरता है। अगर आज सुबह आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकें तो ज़रूर कीजिएगा। अपने घर की बालकनी या छत पर बेजुबान पक्षियों के लिए थोड़ा सा दाना और पानी रख दीजिए। जब आप काम पर निकलें तो रास्ते में मिलने वाले हर उस इंसान को मुस्कुरा कर देखें जो आपकी सुबह को बेहतर बनाने में मदद करता है, चाहे वो आपके घर अखबार देने वाला हो या दूध वाला। और हाँ, शीशे के सामने खड़े होकर खुद से कहिए, आज का दिन मेरा है और मैं अपनी पूरी मेहनत से इसे बेहतरीन बनाऊंगा, क्योंकि ज़िंदगी क्या है किसी को खबर नहीं।

तो जनाब, आज की भोर आपके लिए क्या संदेश लाई है? जी हाँ, ये संदेश लाई है कि किरणें चाहे सूरज की हों या आशा की, जब भी निकलती हैं वो अंधकार को मिटा ही देती हैं। तो अपनी उम्मीदों को जगाए रखिए, रोशन करते रहिए। जी हाँ, और ऊर्जावान बने रहिए।

जिंदगी के लम्हों को और भी खूबसूरत बनाएंगे, बेहतरीन बनाएंगे आपके साथ। लेकिन फिलहाल रूपा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के समक्ष अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस

0: पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। श्री सिंह वृक्ष मित्रों के साथ पूसा परिसर में वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार एक विशाल अभियान में आज 35 करोड़ पौधे लगाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38वीं मासिक किस्त जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। इसके अतिरिक्त 83 करोड़ रुपए से अधिक की 16 नई लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2026 के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन करने के आरोपों से संबंधित कई उपभोक्ता शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में FSSAI ने कहा है कि स्विगी को विस्तृत स्पष्टीकरण और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है और ऐसा न करने पर उचित कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। उपभोक्ता शिकायतों में स्विगी इंस्टामार्ट पर उत्पादों के निर्धारित अवधि समाप्त होने, खराब, सड़े, दूषित और अन्य प्रकार के असुरक्षित खाद्य उत्पादों की आपूर्ति का आरोप लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आरोप की आलोचना की है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का यह बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट कल वियतनाम के फुकवोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों से 10 तमिलनाडु से और 3 आंध्र प्रदेश से जबकि 2 केरल से थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जलडमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी सेना ने कहा है कि ये हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर किए गए। इस बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। और खेलों में इंग्लैंड ने कल रात साउथैम्पटन में 5वें और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में भारत को 56 रन से हराकर श्रृंखला 4-0 से जीत ली है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज तड़के फ्लोरिडा के मियामी स्टेडियम में नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुके हैं। उधर लंदन में कल रात विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने चेक गणराज्य की करोलिना मुकोवा को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया। महिला डबल्स के फाइनल में आज गुओ हान्यो और लुइसा स्टेफेनी की जोड़ी का मुकाबला क्रिस्टीना माल्डिनोविच और ग्रेबेलिया डाब्रोवस्की की जोड़ी से होगा। यह मैच शाम 5:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सुभद्रा रामचंद्रन। Prime Minister Narendra Modi has concluded his historic two-day visit to New Zealand and departed for India. The visit, the first by an Indian Prime Minister to New Zealand in over four decades, gave a major boost to bilateral ties. During the visit, Mr. Modi held talks with his New Zealand counterpart, Christopher Luxon. The two leaders witnessed the exchange of five memoranda of understanding in areas including defence, tourism,

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: Where there's water, there's life. Come, let us adopt rain water harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct borewells, remove silt from water bodies, plant as many trees as possible. This monsoon, let us join Catch the Rain campaign.

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: Where there's water, there's life. Come, let us adopt rain water harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct bore wells, remove silt from water bodies, plant as many trees as possible. This monsoon, let us join Catch the Rain campaign.

0: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम मलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूं। साथियों, जैसा कि हम जानते ही हैं कि हमारा ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के मन की बात का विस्तार है। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में इस बार बीमा सेक्टर के बारे में बात की है और ये भी बताया है कि किस तरह से दुर्घटना के समय जो बीमा राशि मिलती है वो हमारा बहुत बड़ा संबल बनती है और किस तरह से अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग दुर्घटना के समय या फिर उससे पहले छोटी छोटी जो प्लानिंग्स करते हैं वो हमें बहुत ज्यादा साथ देती है, हिम्मत देती है, जीवन में आगे बढ़ने का संबल उसी से हमें प्रदान होता है। तो प्रधानमंत्री जी ने जिस सेक्टर का जिक्र किया है, हम कितना जानते हैं इसके बारे में और क्या हमारे मन में सवाल हैं, उन सबके जवाब आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं। पहले मैं अपने विशेषज्ञों का परिचय आपसे करवा देती हूं। इस विषय के बारे में हम ज्यादा जानेंगे, हमारे विशेषज्ञ हमें बताएंगे। हमारे साथ हैं श्री अशोक चंद्र, आप प्रबंध निदेशक हैं, मुख्य अधिकारी हैं पीएनबी बैंक से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
1: धन्यवाद मैडम।
0: हमारे साथ हैं श्री कुलभूषण शर्मा जी, आप जीवन बीमा निगम से हैं, रीजनल मैनेजर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: हमारे साथ डिप्टी जनरल मैनेजर हैं SBI से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, श्री ह्यूबर्ट। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत स्टूडियो में।
3: थैंक यू मैडम।
0: श्री अशोक कुमार हैं, आप AGM हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, सहायक महाप्रबंधक। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत।
4: थैंक यू मैम।
0: तो ऐसा करते हैं श्रोताओं, सबसे पहले हम मन की बात का वो हिस्सा सुनते हैं जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने बीमा क्षेत्र का जिक्र किया है, दुर्घटना बीमा का उल्लेख किया है।
5: मेरे प्यारे देशवासियों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक परिवार ने अपनी खुशियां बांटने के लिए ऐसा काम किया है जो चर्चा का विषय बन गया है। यहां नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव में पेटकर परिवार रहता है। इस परिवार ने सोचा कि अगर खुशी बांटनी ही है तो ऐसी चीज दी जाए जो मुश्किल समय में किसी परिवार का सहारा बने। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3,500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा कवर दिया गया। इस पहल के पीछे की भावना बहुत स्पर्श करने वाली है। परिवार ने देखा था कि दुर्घटना के बाद परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में एक छोटी सी सहायता भी बहुत बड़ा संबल बन जाती है। साथियों, सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपये के सालाना प्रीमियम पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनमें करीब 28 करोड़ हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, महिलाएं हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को अब तक जो हिसाब मिला है, 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। साथियों, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी

0: ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपए है, मतलब एक दिन का मुश्किल से 1.5 रुपया। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11 लाख परिवारों को करीब 22,000 करोड़ रुपए की सहायता मिल चुकी है। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। इन आंकड़ों के पीछे लाखों परिवारों की अपनी अपनी कहानी है। कहीं किसी माँ को बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिल गई, कहीं किसी पत्नी को घर की जिम्मेदारियां संभालने का सहारा मिल गया। साथियों, कई बार बहुत बड़ी सुरक्षा की शुरुआत बहुत छोटी राशि और एक छोटे से कदम से हो सकती है। छोटा सा भी निर्णय बहुत बड़ा बदलाव करता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में इन योजनाओं की जानकारी जरूर साझा करें।
1: तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का उल्लेख किया, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा का उल्लेख किया और साथ ही हमें प्रेरित किया कि इस क्षेत्र के बारे में हमारी जानकारी और बढ़े। तो इनके बारे में तो हम बात करेंगे ही, लेकिन आइए साथियों, पहले बात करते हैं दुर्घटना बीमा की। छोटा कदम बड़ा बदलाव कैसे बनता है, हमारे विशेषज्ञ हमें बताएंगे। और मैं सबसे पहले अशोक चंद्र जी आपसे ही जानना चाहूंगी कि अगर हम दुर्घटना बीमा की बात करते हैं तो नाम थोड़ा सा डराता है, ऐसा लगता है कि कोई दुर्घटना हो जाए उसके बाद हमें कुछ राशि मिलेगी तो दुर्घटना ही क्यों हो। लेकिन सच्चाई ये है कि जीवन में हम इन चीजों से बच भी नहीं सकते, जब बुरा समय आता है तो बताकर नहीं आता। और ऐसे में जहां हमें संगी साथियों की, परिजनों की जरूरत पड़ती है, वहीं जरूरत पड़ती है कुछ धनराशि की भी जो हमें हौसला दे। तो मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आम नागरिकों के जीवन में लाइफ इंश्योरेंस जो है उसका क्या महत्व है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपने जिक्र किया, आई थिंक माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 जून 2026 के मन की बात कार्यक्रम में दो चीजों का उन्होंने उल्लेख किया, प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना और प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना। और ये दोनों जो स्कीम्स हैं ये लोगों की लाइफ से जुड़े हुए हैं, और किसी तरीके की अनहोनी अगर होती है आपके लाइफ में तो आपके परिवार को कैसे एक आर्थिक मदद मिले, उसके अंतर्गत ये दोनों कार्यक्रम, दोनों जो स्कीम्स हैं उसके भीतर आती हैं। और इसके माध्यम से आई थिंक बहुत बड़े सेक्शन को कंट्री के भीतर, पॉलिसीज के भीतर, जीवन बीमा के भीतर हम उनको कवर कर सकते हैं, और उनको एक किसी भी चैलेंजेस अगर आती हैं लाइफ में तो उसको हम उसके माध्यम से मदद कर सकते हैं
1: जी।
2: और इसका इम्पोर्टेंस यह है कि देखिए, लाइफ में वित्तीय समावेशन के अंतर्गत हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वित्तीय सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा लाइफ का एक पहलू होता है, जीवन सुरक्षा जिसको हम बोलते हैं। और उसके अंतर्गत ये जो एक स्कीम है प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसमें 18 साल से 50 साल के लोगों को 436 रुपए में 2 लाख तक के इंश्योरेंस कवर दिए जाते हैं, और वैसा ही है प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना, जिसके अंतर्गत 20 रुपए में आप किसी भी तरीके की अगर दुर्घटना हो जाती है, और दुर्घटना से आप अगर डिजेबल हो जाते हैं या आप असामयिक देहांत हो जाता है तो उसमें भी आपके जो परिवार वाले हैं जिसको आपने नॉमिनेशन किया है उनको भी 2 लाख का ये मदद मिलता है। इस कार्यक्रम को मैं इससे देखता हूं कि जब आप 12 साल पहले अगर जाए, 2014 में जब फाइनेंशियल इंक्लूजन कंट्री के भीतर स्टार्ट किया गया, वित्तीय समावेशन जिसे हम बोलते हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना का विस्तार किया गया, जिसमें आज करीब 56 करोड़ लोग बैंक की प्रणाली से जुड़े हैं
1: जी,
2: और उसमें करीब 2,67,000 करोड़ की डिपॉजिट उन स्कीम्स में मौजूद है, तो उसको ही आगे कैसे ले जाया जाए, उन लोग जो बैंक के से जुड़े और बैंक में खाता उन्होंने खोला, तो बैंक का खाता खोलना तो एक इमीडिएट एक रिक्वायरमेंट थी और उसमें हम लोगों ने उसमें मदद की लोगों को खाता खोलने में, लेकिन उसको और आगे लेकर कैसे जाएं, उसमें ये जो दो स्कीम्स हैं जो सुरक्षा आपको प्रोवाइड करती हैं उसको आगे ले जाने का प्रयास स्कीम्स के माध्यम से किया जा रहा है। और मेरा इस कार्यक्रम के माध्यम से जरूर अनुरोध होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इन दो स्कीम से जुड़े। आई थिंक इतनी कम राशि में आपको 2 लाख का इंश्योरेंस कवरेज
1: जी,
2: एक तो दुर्घटना के लिए और एक जो टर्म लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं वो, आई थिंक किसी भी इंश्योरेंस स्कीम में नहीं मिल सकती है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इन

0: स्कीम्स के साथ जुड़े और इन स्कीम्स का लाभ उठाएं।
1: जी, तो यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कुलभूषण शर्मा जी, जब हम बात करते हैं वित्तीय समावेशन की, ऐसे में हमारे देश में जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो स्थापित काम कर रहा है, उनके लिए फिर भी ये बात सरल लगती है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जिनका बहुत ही संगठित क्षेत्र में जो काम नहीं कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वित्तीय समावेशन में क्या हम उन्हें भी शामिल कर रहे हैं इन पॉलिसीज के थ्रू?
2: मेरे विचार में वित्तीय समावेशन में जब जीवन बीमा के हितलाभों को जोड़ा गया, तो शायद प्रधानमंत्री महोदय अपने एक दीर्घकालिक एजेंडा के तहत ग्रामीण क्षेत्र को या उन क्षेत्रों को जोड़ना चाहते थे जिनको इंश्योरेंस कंपनीज टारगेट नहीं कर रही थी, उनका लक्ष्य नहीं ले रही थी, क्योंकि माना यह जाता था कि उनके भुगतान योग्य क्षमता कम है, इसलिए कम राशि में बीमा किया गया। मेरे विचार में शायद हमारे देश की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे सस्ती ग्रुप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, और 20 रुपए में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी शायद पूरे विश्व की सबसे सस्ती इंश्योरेंस पॉलिसी होगी।
1: जी,
2: जहां तक ग्रामीण क्षेत्र का सवाल है, मुझे लगता है हमें अपने लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है, क्योंकि किसी भी मानव का अपने परिवार के लिए दो प्रकार का मूल्य है। पहला भावनात्मक, जो कोई किसी का माता है, पिता है, बेटा है, बेटी है। दूसरा है उनका कोई न कोई वित्तीय मूल्य है, जिसे हम ह्यूमन लाइफ वैल्यू में आंकते हैं, मानव जीवन मूल्य के आधार पर। मैं जितना अपने परिवार के लिए कमा के देने वाला हूँ वो मेरा मानव जीवन मूल्य है, अगले 10 वर्ष में मैं कितना कमाने वाला हूँ ये मेरे मानव जीवन मूल्य का आंकलन हो सकता है। और मान लीजिए मेरी अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो मेरे परिवार को एक वित्तीय क्षति होती है जिसके लिए बीमा समाधान उपलब्ध है। 2 लाख का बीमा समाधान सस्ता है, लेकिन ये जानने की आवश्यकता है कि क्या 2 लाख पर्याप्त है, इसलिए शायद 2 संदर्भ में इसको किया गया। 2 लाख का जो जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ है
1: जी,
2: उसमें हमने किसी भी प्रकार की मृत्यु को कवर किया है, और दुर्घटनावश मृत्यु के लिए हमने 20 रुपए में 2 लाख का और कवर किया है। ये प्रत्येक व्यक्ति को लेना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस है, और इसके बारे में हम जितनी जागरूकता फैलाएंगे उतना बढ़िया होता जाएगा। और आज के डेट में अगर हम आंकड़ों के आधार पर बात करें तो वित्तीय सेवाएं विभाग की तरफ से जो आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं नवंबर 2025 के अनुसार 25 करोड़ 79 लाख लोग इस बीमा योजना से जुड़ चुके हैं।
1: जी,
2: अभी तक 10,02,628 मृत्यु दावों का भुगतान किया गया है, जो विश्वास बढ़ाता है इस प्रणाली में कि बीमित लोगों को जब भी इस तरह का कोई अकस्मात इमरजेंसी आएगा तो भुगतान किया जाएगा।
1: जी, तो भरोसा बढ़ता है इससे। यहाँ अशोक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पिछले कुछ वर्षों से अगर हम तुलना करें तो भारतीय बीमा बाजार में आप क्या बड़े बदलाव देख रहे हैं? अब लोग इंश्योरेंस को लेकर थोड़ा अवेयर हुए हैं क्या? और जिस तरह से अर्निंग को लेकर बहुत कॉशियस रहते हैं, वैसे सेविंग्स के साथ साथ क्या इंश्योरेंस की तरफ भी उनका ध्यान बढ़ा है? क्या कहेंगे आप?
3: धन्यवाद नीलम जी। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में कहा था कि पीएमजेजेवाई और पीएमएसवी ये भी इंश्योरेंस की एक स्कीम्स हैं जो कि अफोर्डेबल कीमत पे लोगों को उपलब्ध कराती हैं।
1: जी,
3: तो ये जो हमारा वित्तीय समावेशन है कि भारत को अगर विकसित राष्ट्र बनाने का सपना है तो इसमें हर नागरिक को आर्थिक रूप से सशक्त करने पर जोर देना पड़ेगा, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। इसे हासिल करने के लिए उन्होंने वित्तीय समावेशन का नियम फार्मूला लाए।
1: जी,
3: इसको उपयोगी कैसे करें, वित्तीय समावेशन क्या है, कैसे इसको ले आ पाए? तो वित्तीय समावेशन का मतलब है कि उपयोगी और किफायती वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना, जैसे बैंकिंग, ऋण, बीमा, डिजिटल भुगतान, खासकर कमजोर वर्गों और कम आय वाले समूह के लिए उचित लागत पर कम से कम उनको खर्च करना पड़े। भारत में वित्तीय समावेशन के तहत जो बीमा योजना उपलब्ध है उसमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये दोनों इसमें उपलब्ध हैं। अब अगर इसको देखें कि अभी तक हमारे पास 31 मार्च 26 तक हमारे देश में कितना पीएमजेजेवीवाई और कितना पीएमएसवीवाई लोगों को उपलब्ध हुआ है,
1: जी,
3: तो पीएमजेजेवीवाई 23,35,00,000 ये फिगर है जो अभी तक हमारे देश में 31 मार्च 26 तक दी जा चुकी है।
1: जी,
3: पीएमएसवीवाई 53,97,00,000 इतने लोगों को ये सुविधा उपलब्ध है। टोटल इसको अगर इस तरह से देखें कि इसमें पीएमजेजेवाई और एसबीआई पूरे जो समूह है उसमें बैंक और पोस्ट ऑफिस सभी इसको उपलब्ध कराते हैं, तो सभी को टोटल मिला के ये संख्या उपलब्ध कराई है। इसमें हमारे एसबीआई का अगर आप शेयर देखें तो लगभग पूरे बैंकिंग क्षेत्र में हमारा 35% का शेयर है और 30% का शेयर पीएमएसवीवाई में है। इसको अगर समझें कि पीएमजेजेवाई क्यों जरूरी है, तो पीएमजेजेवीवाई इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे यहाँ कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं है लोगों के लिए, कोई सामाजिक सुरक्षा स्कीम हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लिए या कम

0: निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए हमारे भारत में उपलब्ध नहीं है। और अगर उनका कोई व्यक्ति जो मेन कमाने वाला घर का मुखिया होता है उसकी किसी कारण से दुर्घटना होने पे या दुर्घटना होने पे उसका किसी तरह की क्षति होती है, मान लीजिए कि उसका आधा पैर हाथ या इस तरह की दुर्घटना में उसको जो काम करने की है उसकी क्षति होती है, तो उसको कोई बीमा किसी तरह का नहीं मिलता है। इसी तरह अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के लिए कोई सुरक्षा उपलब्ध नहीं होती है। और हमारे देश में ज्यादातर लोग ग्रामीण क्षेत्र में या निम्न आय वर्ग के लोग हैं जिनके पास इस तरह की कोई सुरक्षा बीमा उपलब्ध नहीं है
1: जी।
0: तो इसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने एक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो की थी, ये पूरी तरह लाइफ इंश्योरेंस है और इसमें सिर्फ 436 रुपए एनुअल प्रीमियम है, वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपए है। इसको भुगतान करके कोई भी व्यक्ति इसको ले सकता है। उसके साथ सिर्फ एक ही कंडीशन है कि उसका बैंक में खाता होना चाहिए
1: जी,
0: ये उसकी कंडीशन है। और 436 रुपए में लेने के बाद एक साल के लिए उसको 2,00,000 रुपए का बीमा पूरे एक साल के लिए मुफ्त है कि अगर उसके साथ कुछ भी घटित होता है
1: जी
0: तो उसका 2,00,000 रुपए उसके नॉमिनी को प्राप्त हो जाए
1: जी। इस बारे में मैं आपसे और भी जानना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपकी पसंद का एक गाना सुनवाना चाहती हूँ अपने श्रोताओं को। अशोक जी, आप अपनी पसंद का कौन सा गाना सुनवा रहे हैं?
0: मैं ना भूलूंगा जी, जो शोर फिल्म का गाना है उसको आप सुनवाइए
1: जी। बहुत ही प्यारा।

0: गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू की गई दो योजनाओं की, जो कि बीमा योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, और साथ ही बीमा क्षेत्र के बारे में हम अपनी जानकारी भी बढ़ा रहे हैं हमारे विशेषज्ञों के माध्यम से। स्टूडियो में इस समय हमारे साथ हैं पीएनबी बैंक से प्रबंध निदेशक श्री अशोक चंद्र जी, हमारे साथ हैं जीवन बीमा निगम क्षेत्र के रीजनल मैनेजर श्री कुलभूषण शर्मा जी। इस समय स्टूडियो में श्री ह्यूबर्ट हैं, जो कि डिप्टी जनरल मैनेजर हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, और श्री अशोक कुमार हैं एजीएम एसबीआई के सहायक महाप्रबंधक। और हम बात कर रहे थे कि ये योजनाएं क्यों शुरू की गई और इनका लाभ किस तरह से मिल रहा है आमजन को। तो मैं अशोक जी अब आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग और जो निम्न आय वर्ग है उन्हें इसका लाभ मिल रहा है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूं कि क्या महानगरों में रहने वाले जो लोग हैं, जो कि इसी तरह का असंगठित क्षेत्रों में जो काम करते हैं या श्रमिक हैं, मजदूर हैं, क्या वो भी इसका लाभ ले सकते हैं?
1: या बिल्कुल, इस स्कीम में केवल एक ही क्राइटेरिया है, आपका बैंक में अकाउंट होना चाहिए
0: जी,
1: और एज जो है प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना के भीतर 18 साल से 50 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए, और अगर आपने ये लिया हुआ है तो 55 साल तक आप इसको अवेल कर सकते हैं
0: जी।
1: दूसरा, इसमें और कोई किसी भी तरीके के प्रतिबंध नहीं लगे हुए हैं, और जैसा कि हमारे शर्मा जी ने भी बताया आपको कि बहुत ही सुगम है, बहुत ही सरल है, और इतने कम रुपए में आप कोई ऐसी स्कीम के अंतर्गत आप इंश्योरेंस नहीं ले सकते हैं
0: जी।
1: मैं देख रहा था कि 436 रुपए जीवन ज्योति बीमा योजना के भीतर है और 20 रुपए जीवन सुरक्षा बीमा योजना के भीतर है, और अगर आप चाहें तो दोनों आप एक साथ ले सकते हैं, तो टोटल आपकी जो खर्च होती है वो 456 रुपए खर्च होता है
0: जी।
1: आप 365 दिन से अगर आप इसको डिवाइड कर दें तो 1 रुपए 24 पैसे, 1.25 रुपए में आपको ये स्कीम 2 लाख का कवरेज आपको मिल रहा है
0: जी।
1: तो मेरा मानना है कि जितने लोग हैं और जिस आयु वर्ग में 18 से 50 साल के इस ग्रुप में है, आई थिंक उनको तो ये जीवन ज्योति बीमा योजना तो लेना ही चाहिए, और ये गांव में तो है ही, शहर में भी है, इनफैक्ट सारे सर्विस सेक्टर में भी जो लोग काम कर रहे हैं हम लोगों ने खुद लिया हुआ है
0: जी।
1: मैंने अपना खुद इंश्योरेंस कवरेज दोनों स्कीम में लिया हुआ है, तो इसका लाभ तो हमारे देश के सारे नागरिक इसका लाभ ले सकते हैं, और यही इसकी खूबसूरती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको लें और एक सुरक्षा कवच के रूप में एक अपने नॉमिनीज को प्रोवाइड करें
0: जी। जैसा कि आपने कहा कि बहुत ही कम हमें इसके लिए भुगतान करना है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि छोटा कदम बड़ा बदलाव, कि बहुत ही छोटा सा अमाउंट एक देना होगा। मैं आपसे जानना चाहूंगी कुलभूषण जी, जैसा अभी सर ने बताया अशोक चंद्र जी ने, कि हम लोग जो सर्विस सेक्टर में हम भी ले सकते हैं, मैं जानना चाहूंगी आप डिटेल में इस बारे में बताएं कि एक परिवार में क्या ऐसा कोई नियम है कि एक ही व्यक्ति ले सकता है, जो परिवार का मुखिया है वही ये बीमा ले सकता है, और इसके लिए क्या कोई आय प्रमाण पत्र जमा करवाना होता है, क्या प्रक्रिया है?
2: जहां तक प्रधानमंत्री योजनाओं का संदर्भ है, दोनों ही योजनाओं में किसी प्रकार

0: का आय का प्रमाण पत्र नहीं देना पड़ता,
1: जी
0: किसी भी प्रकार का सदस्यों के रूप में संख्या का कोई नियंत्रण नहीं है। कोई भी व्यक्ति जिसके पास खाता है, जो खाता धारक है, वो उसे ले सकता है।
1: जी
0: केवल एक शर्त है, एक व्यक्ति एक से ज्यादा बार ये लाभ नहीं ले सकता। जैसे मान लीजिए कोई ग्राहक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी उनका खाता है और पीएनबी में भी खाता है, तो दोनों जगह से दो दो लाख का वो बीमा नहीं ले सकता।
1: जी
0: इसके अलावा और कोई भी इस पे किसी भी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। परिवार के अगर 10 सदस्य हैं तो 10 के 10 अगर वो खाता धारक हैं
1: जी
0: तो बीमा ले सकते हैं। और प्रीमियम देने की दशा में प्रीमियम की कटौती होना पर्याप्त है मृत्यु की दशा में बीमा राशि देने के लिए। इसके अतिरिक्त हम कुछ भी नहीं मांगते। हाँ, मृत्यु प्रमाण पत्र मांगा जाता है, नामांकित व्यक्ति का केवाईसी मांगा जाता है जिसमें उनका आधार कार्ड वैध है, और उनके खाते का होना, और खाते को भी नेफ्ट किया जाएगा, सीधा ग्राहक के खाते में पहुंचता है पैसा, उसका पंजीकरण किया जाना आवश्यक होता है। केवल इतनी ही शर्तें इस पे लागू हैं।
1: जी, अगर उन्होंने पहले से प्राइवेट सेक्टर में कोई बीमा लिया है तो क्या वो एक अवरोधक है या उसके साथ ही बीमा लिया जा सकता है?
0: चाहे उन्होंने निजी क्षेत्र में लिया हो या सरकारी क्षेत्र में लिया हो, अगर पीएमजेजेवाई के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का बीमा लिया गया है तो उसकी इस पे कोई भी बाध्यता नहीं है। ये 2 लाख का बीमा राशि पीएमजेजेवाई में और 2 लाख की बीमा राशि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में उपलब्ध है।
1: जी, इस बारे में मैं आपसे और सवाल करूंगी, लेकिन पहले एक सवाल कि आप कौन सा गाना सुनवा रहे हैं हमारे श्रोताओं को?
0: आज का जैसा वातावरण है,
1: जी,
0: किशोर कुमार जी का एक गाना है, आज चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, वो मुझे मेरा वैसे भी फेवरेट गाना है, बहुत मुझे अच्छा लगता है,
1: तो हम आपको सुनवा रहे हैं यही गीत।

0: इस गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। हमारे विशेषज्ञ आज हमें बता रहे हैं दुर्घटना बीमा के बारे में विस्तार से और क्या प्रक्रिया है, किस तरह से उचित माध्यम से इसका लाभ लिया जा सकता है। अशोक जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं, इंश्योरेंस सेक्टर में पिछले दिनों आपने क्या ऐसा बड़ा बदलाव देखा है? क्या अब आपको ऐसा लग रहा है कि युवा भी इस ओर आकर्षित हो रहे हैं और वो जागरूक हैं बीमा के बारे में?
1: बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया नीलम जी आपने। जैसा कि आपने देखा कि अभी कुछ दिन पहले हमारा देश कोरोना जैसी महामारी से गुजरा है
0: जी।
1: तो जब कोरोना में बहुत सारे हमारे देशवासियों की मृत्यु भी हुई और बहुत सारे लोगों का अपना कार्ड छूटा, तो इन परिस्थितियों में ये जिसने जीवन ज्योति बीमा योजना में पहले से नामांकन किया था हमारे देशवासियों ने, उनके परिवारों को कुछ आर्थिक मदद मिली, तो इसमें

0: युवा भी इस ओर आकर्षित हो रहे हैं और वो जागरूक हैं बीमा के बारे में।
1: बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया नीलम जी आपने। जैसा कि आपने देखा कि अभी कुछ दिन पहले हमारा देश कोरोना जैसी महामारी से गुजरा है
0: जी,
1: तो जब कोरोना में बहुत सारे हमारे देशवासियों की मृत्यु भी हुई और बहुत सारे लोगों का अपना कार्ड छूटा, तो इन परिस्थितियों में ये जिसने जीवन ज्योति बीमा योजना में पहले से नामांकन किया था हमारे देशवासियों ने, उनके परिवारों को कुछ आर्थिक मदद मिली, तो इसमें नामांकन करने के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दोनों में जितना अधिक से अधिक लोगों ने नामांकन किया है उसी हिसाब से उसी रेशियो में कंपनियों ने उनको भुगतान किया, और इसमें भुगतान का जो रेशियो है वो काफी अच्छा है
0: जी।
1: कि इसमें क्लेम तुरंत हो जाता है और बहुत समय नहीं लगता, लगभग एक माह के अंदर क्लेम नॉमिनी को मिल जाता है। पहले मैं इस स्कीम के बारे में थोड़ा सा डिटेल से आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में कौन एनरोलमेंट कर सकता है, कैसे कर सकता है और कितनी उम्र तक ये वैलिड है
0: जी।
1: तो इसमें जीवन ज्योति बीमा योजना ये पूरी तरह से बीमा योजना है, इसमें किसी भी कार्ड से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए का कवर प्रदान करती है। इसमें कुछ नहीं पूछा जाता कि मृत्यु कैसे हुई। इसका प्रीमियम मात्र 436 रुपए है, साल भर के लिए है। अगर किसी ने बीच में प्रीमियम लिया है तो उसको प्रोरेटा पे वो कम हो जाता है
0: जी,
1: और 1 जून से 31 मई हर साल उसके लिए वैलिड होती है। इसका जो प्रीमियम है वो ऑटो डेबिट माध्यम से मई के 31 मई के आसपास आपके खाते से डेबिट होता है। तो सभी भाइयों ने जिन्होंने अभी तक स्कीम ली है उनसे अनुरोध है कि वो कृपया ये सुनिश्चित करें कि जब भी मई महीने में इसका रिन्यूअल आए तो अपने खाते में सफिशियंट बैलेंस रखें, क्योंकि अगर एक बार रिन्यूअल में पैसा नहीं कटा तो पॉलिसी लैप्स हो जाएगी, तो फिर से आपको पॉलिसी लेनी पड़ेगी। तो पहला तो इसमें ये ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरा, इसमें जो एनरोलमेंट कर सकते हैं, जैसा कि सर ने बताया था कि 18 से 50 वर्ष की उम्र का कोई भी व्यक्ति जिसका बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता है वो इसमें एनरोल कर सकता है। ये स्कीम 55 साल तक लागू रहती है। अगर आपने 18 से 50 साल के बीच में एनरोलमेंट कर लिया है तो स्कीम का लाभ आप 55 साल की उम्र तक ले सकते हैं। इसमें सभी प्रकार के खाते कवर होते हैं। बैंक में आपका ओडी है, केसीसी है, किसान क्रेडिट कार्ड है, सेविंग बैंक है, चालू खाता है, सभी खाते इसमें कवर है। आपका बैंक में खाता होना चाहिए। जो इसकी पॉलिसी है उसमें एक 30 दिन का कूलिंग पीरियड रहता है कि अगर उस पीरियड में कुछ बात होती है तो उसके बाद आपको वो पैसा मिलेगा, इसलिए जितनी जल्दी हो जाए इसमें एनरोलमेंट कर लेना चाहिए
0: जी।
1: दुर्घटना की स्थिति में ये तुरंत लागू हो जाता है, जैसे ही आपने किया है ये उसी दिन से इफेक्टिव हो जाएगा। अब बात करते हैं सुरक्षा बीमा योजना की। तो सुरक्षा बीमा योजना ये एक तरह से पूरी तरह दुर्घटना बीमा योजना है। इसमें किसी भी प्रकार से आकस्मिक मृत्यु होने पर या विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपए का कवर प्रदान करती है
0: जी।
1: इसका प्रीमियम मात्र 20 रुपए है, साल भर का प्रीमियम मात्र 20 रुपए है, और इसमें 18 से 70 वर्ष के बीच का कोई भी व्यक्ति ले सकता है, सब्जेक्ट टू कि उसका खाता बैंक में या पोस्ट ऑफिस में होना चाहिए
0: जी।
1: ये आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता दोनों को कवर प्रदान करती है। 18 से 70 वर्ष के जो भी खाता धारक हैं और किसी भी तरह का उनका बैंक में खाता है, केसीसी है, किसान क्रेडिट कार्ड है या चालू खाता है, बचत खाता है, वो इसके लिए एलिजिबल है, वो इसमें तुरंत एनरोलमेंट करा सकते हैं
0: जी।
1: ये पॉलिसी भी 1 जून से 31 मई तक के लिए वैलिड होती है और मई महीने में इसका फिर से रिन्यूअल प्रीमियम आपके खाते से डेबिट होता है
0: जी।
1: तो उसको आप सफिशियंट अपना मई महीने में बचत रखें जिससे कि आपके खाते से उसका प्रीमियम डेबिट हो सके
0: जी।
1: इसमें 2 लाख का कवर है जो एक्सीडेंटल केस में है, और इसका क्लेमेंट बड़ा ही सिंपल है। इसको आप जैसे ही किसी की मृत्यु होती है उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा के और उसके कारण के साथ कि किस कारण से मृत्यु हुई है आप उस बैंक में दे दें, तो वो सब इंश्योरेंस कंपनी को भेज देते हैं और वहां से क्लेम नॉमिनी को मिल जाता है। इसमें एक चीज जो हमने नोटिस की है वो हम कहना चाहेंगे कि जब भी इस कंपनी में, इस इंश्योरेंस स्कीम में जब भी कोई व्यक्ति नॉमिनी करे तो ध्यान रखे कि अपनी नॉमिनी का नाम ध्यान से उसमें भरे
0: जी।
1: क्योंकि कई बार देखा गया है कि जब नॉमिनी का नाम होता है तो पहले कई बार गलत भर दिया जाता है जिसको सुधारने में फिर काफी समय लगता है। सो इसका ध्यान रखना है कि जब इंश्योरेंस पॉलिसी ले तो जो भी आपकी नॉमिनी है उसका नाम ठीक से भरा जाए
0: जी। ये आपने पूरी प्रक्रिया हमें समझाई और बहुत ही सरल तरीके से आपने समझाई है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोता जो अब विचार कर रहे होंगे ये बीमा लेने के लिए, उन्हें पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। और जो हमारे हेल्प करते हैं रोजमर्रा के जीवन में, हमारे घर में जो काम के लिए आते हैं, चाहे हमारे ड्राइवर भैया हैं, माली काका हैं, तो हम ऐसे लोगों को भी बताएं इसके बारे में, क्योंकि उनके लिए बेहद उपयोगी ये होगा। और जो जानकारी है

0: से हमें पता चलता है कि बहुत ही सरल तरीके से ये बीमा लिया जा सकता है। अशोक चंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगी सर, अक्सर लोग ये कहते हैं कि कोई भी पॉलिसी जब हम लेते हैं तब उसमें शुरुआत में तो बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और बड़े अच्छे से समझा दिया जाता है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है उस पैसे की, तो एक तो अगर वो दुर्घटना बीमा है या मृत्यु बीमा भी है, तो होता यह है कि एक तो परिवार वैसे ही दुखी है, परेशान है, मनोबल उनका बहुत कम है, और उसमें हिडन क्लॉजेस भी सामने आते हैं, निजी क्षेत्र में अक्सर ऐसा देखा जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या इस तरह का कोई लूप होल, क्या कमी इस पॉलिसी में भी है, इन योजनाओं से जुड़ी है?
1: नहीं, इनफैक्ट इस स्कीम की यही ब्यूटी है
0: जी
1: कि जितना ये सरल है इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए, उतना ही सरल है इसके कोई भी क्लेम अगर आते हैं तो उसके निपटारा के लिए भी
0: जी।
1: और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो भी दोनों स्कीम के अंतर्गत जो इंश्योरेंस ली जाती है, चूंकि ये बैंक के माध्यम से होता है, जैसा कि हमारे सारे पैनलिस्ट ने बताया आपको कि खाता होना आपका जरूरी है, बैंक में खाता होना चाहिए और बैंक के खाते में ही इसका प्रीमियम जो है वो डेबिट होता है, और बैंक एक मीडियम है जो ये फैसिलिटी आपको इंश्योरेंस की प्रोवाइड करता है। तो इसमें किसी भी तरीके के जो क्लेम होते हैं तो हमारे बैंक के जो साथी हैं वो उसकी पूरी प्रोसेसिंग करते हैं और प्रोसेसिंग करके और रिस्पेक्टिव इंश्योरेंस कंपनीज में उसको दाखिल करते हैं और बैंक पूरा सहयोग करता है इसमें, इसको निपटारा करने के लिए। और जैसा कि अभी चर्चा में आया कि क्लेम सेटलमेंट अगर देखा जाए तो 99% क्लेम सेटलमेंट रेशियो है इसमें
0: जी
1: प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना में, और करीब 97% क्लेम सेटलमेंट रेशियो है प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना में। तो इसमें किसी भी तरीके की शंका और कठिनाई आप नहीं समझे कि इंश्योरेंस तो मिल गया लेकिन आगे क्लेम सेटलमेंट कैसे होगा, बहुत ही सरल है और ये प्रायोरिटी में आता है हमारा, चूंकि ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक पार्ट है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का ये पार्ट है, तो बैंकों का भी दायित्व तो बनता है इसमें और इंश्योरेंस कंपनीज का भी दायित्व तो बनता है
0: जी
1: कि इसको कैसे जल्दी से इस तरीके के कोई सेटलमेंट क्लेम आए हैं तो उसको निपटारा किया जाए
0: जी। और यहाँ इसी मोड पर आपकी पसंद का एक गाना
1: मेरी तरफ से, अगर आप कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है
0: जी,
1: अगर इस गाने को आप सुनाएं तो मुझे बहुत खुशी होगी
0: जी। बहुत ही प्यारा सा गाना आपने चुना है हमारे श्रोताओं के लिए, तो लीजिए सुनिए ये गाना।

0: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज हमारे विशेषज्ञ हमें बता रहे हैं कि बीमा जो है वो हमारे लिए क्यों जरूरी है, और विशेष तौर से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा को हम समझ रहे हैं अपने विशेषज्ञों के माध्यम से। हमारे विशेषज्ञ बहुत ही सरल भाषा में और बैंकिंग प्रणाली किस तरह से सहयोग करती है वो हमें बता रहे हैं। दुर्घटना बीमा, छोटा कदम बड़ा बदलाव, किस तरह से हमारे जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है हमारी छोटी छोटी बचत से, हमारे छोटे छोटे प्रयासों से। तो यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कुलभूषण शर्मा जी, आम तौर पर ऐसा होता है कि हम जब भी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो बेहद सरल लगता है कोई भी भुगतान करना, या अब पेमेंट हमें जब आती है तो बहुत खुशी होती है, लेकिन साथ ही एक साइबर फ्रॉड जो है, साइबर क्राइम्स जो है, उसका जोखिम भी बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में जब ये बीमा योजना जो है पूरी तरह से बैंकिंग प्रणाली पर ही निर्भर है, तो आपको क्या लगता है कितना सुरक्षित ये पूरा कार्य है, और छोटी छोटी बचत जो लोग अपनी जोड़कर देंगे और मुसीबत के लिए उस समय के लिए वो अपना धन संचय करते हैं कि जरूरत के समय हमें काम आए, क्या इसमें इस तरह का कोई डर जुड़ा है साइबर फ्रॉड का?
1: बैंकिंग और बीमा क्षेत्र में फ्रॉड होने की संभावना, इससे इनकार नहीं किया जा सकता
0: जी।
1: पीएमजेजेवाई या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में भी इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जो इससे जुड़ी संस्थाएं हैं उनके ढांचे में ये पूर्ण व्यवस्था की गई है कि ऐसे फ्रॉड को रोका जा सके और फ्रॉड ना हो। दोनों के सहयोग से अगर ग्राहक छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता है
0: जी,
1: तो फ्रॉड की संभावना नगण्य अथवा शून्य हो जाती है। मेरे विचार में इस क्षेत्र में अगर हम दोनों योजनाओं की बात करें, हमारा जो ग्राहक है
0: जी,
1: वो बहुत अधिक इंटरनेट अथवा मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा है और भुगतान की विधि हमने नेफ्ट के द्वारा रखी है
0: जी,
1: तो हमारी साझी जिम्मेवारी बनती है बीमाकर्ता की और बैंक की कि नेफ्ट का जो सही आंकड़े हैं उनकी प्रविष्टि की जाए, उनको भली प्रकार जांच लिया जाए, और क्योंकि ये पैसा सीधा जो बेनिफिशियरी है उसके खाते में जाने वाला है, फ्रॉड को रोका जा सकता है। मेरे विचार में यहाँ उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ग्राहक को हम दोनों कंपनीज पे भरोसा करना चाहिए, जिस बीमा कंपनी से उन्होंने बीमा लिया है या जिस बैंक से उन्होंने अपना खाता रखा है
0: जी।
1: दोनों ही सुदृढ़ हैं इस मामले में, जागरूक हैं, ग्राहक उन्मुखी हैं कि ऐसी घटनाएं ना हो
0: जी। और क्योंकि इसमें ऐसी कोई प्राइवेट कंपनी शामिल नहीं है कि वो बहुत ही लालच कुछ दे कि हम बहुत कम समय में आपको ये प्रोविडेंट देंगे, ये लाभ देंगे, तो वो जोखिम भी कम हो जाता है, इसमें भरोसा बनाए रखा जा सकता है। अशोक जी, आपसे जानना चाहूंगी, ग्रामीण क्षेत्रों में हम कई बार इस तरह की घटनाओं के बारे में सुनते हैं कि किसी को सांप ने काट लिया, उसकी वजह से मृत्यु हो गई, या बिजली गिरी है कहीं पर, या किसी घर का निर्माण हो रहा था, छत ढह गई है, बारिश या भूकंप में इस तरह की दुर्घटना हुई। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस दौरान जबकि डॉक्यूमेंट्स भी पूरे नहीं हैं और घर का माहौल भी जो है वो बहुत ही दयनीय स्थिति में है, तो कैसे मदद होती है इन योजनाओं के माध्यम से?
2: धन्यवाद नीलम जी, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। आज के जमाने में ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं रहता कि जब इस तरह की दुर्घटना उनके साथ हो जाए तो वो किस तरह इसके साथ डील करें। तो पहला तो ये कि दुर्घटना में अगर मृत्यु होती है, किसी भी कारण से होती है, तो जीवन ज्योति बीमा योजना में कवर मिलता है। तो उसके लिए सिर्फ हमें मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, जो व्यक्ति है जिसका बीमा किया गया है उसके मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, तो वो बनवाने के लिए तुरंत उसका प्रयास करना चाहिए
0: जी।
2: दूसरा जो सवाल आपका था कि जो सुरक्षा बीमा योजना है, चूंकि एक्सीडेंटल स्कीम है, इसमें 2 लाख का बीमा कवर है, उसमें एक्सीडेंट से है, तो जैसे सर्पदंश से अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो इसमें मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ साथ पोस्टमार्टम

0: रिपोर्ट जिसमें ये डॉक्टर कन्फर्म करेगा कि हाँ इस वजह से इसकी मृत्यु हुई है, हमारे जो खाता धारक है उसकी, वो उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट करेगा। तो ये जो दो रिपोर्ट होंगी इसको जैसे ही बैंक में सबमिट करेंगे तो बैंक इसको फर्दर प्रोसेस करने के लिए उसको पोर्टल पर डाल देगी।
1: जी
0: ऐसे ही जो आपने बोला कि आकाशीय बिजली गिरने से अगर होती है तो वो भी इसमें कवर है, दुर्घटना बीमा योजना में दोनों कवर है
1: जी।
0: तो इसमें हो जाएगा। अगर मकान गिरने से हुआ है तो वो भी इसमें कवर है। तो कोई भी दुर्घटना होती है और उसके कारण अगर मृत्यु होती है तो इसमें दोनों तरह का बीमा मिलेगा
1: जी।
0: सुरक्षा बीमा योजना भी 2 लाख का मिलेगा और जीवन बीमा योजना भी 2 लाख का मिलेगा। तो अगर दुर्घटना से किसी व्यक्ति की मृत्यु सांप के दसने से, बिजली आकाशीय बिजली गिरने से या उसका मकान ढहने से हुई है तो उस केस में उस व्यक्ति को 2+2 4 लाख रुपए का क्लेम बैंक से और जो इंश्योरेंस कंपनी है उससे पास हो जाए।
1: जी, और कितनी समय सीमा के भीतर ये मिलता है या कितने दिन का समय उसे दिया जाता है ताकि परिजन स्वयं को संभाल सकें, क्योंकि कुछ समय उन्हें अपने लिए भी चाहिए होता है, तुरंत वो क्लेम के लिए नहीं आ सकते, तो कितना समय उनके पास होता है?
0: सो इसमें देखिए 1 महीने का समय मिलता है कि हम कम से कम 1 माह में उसको जितनी जल्दी सहायता करें उतना अच्छा होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि अगर वो 1 माह या 2 माह या 3 माह में नहीं कर पाए तो क्लेम उसको नहीं मिलेगा। जब उसको पता चले उसके नॉमिनी को कि हमारा इंश्योरेंस था, पति का उसके खाते से पैसे कटे हैं, तो जैसे ही उसको पता चले वो इन कागजों के साथ बैंक में संपर्क करें। दूसरा क्या है, इसमें हम लोग भी मदद करते हैं कि हमारा काफी नेटवर्क है। आप जानते हैं कि बैंक में न सिर्फ ब्रांचें हैं, हमारे ग्राहक सेवा केंद्र भी हैं। तो हमारा जो नेटवर्क है, हम उन लोगों को, चूंकि ग्राहक सेवा केंद्र गांव में रहता है और एक गांव के लगभग काफी लोगों को वो परिचित होता है, तो जैसे ही किसी की मृत्यु होती है जो हमारे ग्राहक सेवा केंद्र का प्रतिनिधि है उसको पता चल जाता है, तो वो उसको मदद करता है कि इन्होंने जीवन बीमा लिया था, इन्होंने सुरक्षा बीमा योजना लिया था, तो वो उसके कागज बनवाने में भी मदद करते हैं और इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम सबमिट कराने में बैंक को भी मदद करते
1: जी। यानी सुओ मोटो एक्शंस भी हैं, मदद की जाती
0: यस,
1: है।
0: यस
1: जी, यहाँ ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर बीमा लेते वक्त अपना नॉमिनी नहीं किसी ने रजिस्टर किया है, उसकी जानकारी नहीं है, ऐसी स्थिति में क्या होता है?
0: ये जो हमारी सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना है इसमें प्री कंडीशन है नॉमिनी का नाम देना। जब भी हम बीमा एनरोल करते हैं उसी समय नॉमिनी का नाम उसमें डालना आवश्यक है। तो ऐसी परिस्थिति नहीं है कि उसमें नॉमिनी नहीं मिले। बस गलती कई बार ये हो जाती है कि चूंकि फॉर्म अक्सर अंग्रेजी में भरे जाते हैं तो स्पेलिंग में कई बार लोगों से गलतियां हो जाती है, या लोग कुछ बुलाते हैं घर पे कुछ और कई बार उस नाम को भर देते हैं, बट नॉमिनी उसमें डालना कंपलसरी है, उसके बिना बीमा आज की तारीख में नहीं मिलता है, तो इस तरह की कोई शिकायत इसमें नहीं है।
1: जी, आपसे जानना चाहूंगी सर, प्रधानमंत्री जी ने इस तरह की बहुत सारी योजनाएं शुरू की हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए हैं, विशेष तौर से महिलाओं के लिए हैं, छोटे छोटे समूह में महिलाएं ग्रुप इंश्योरेंस भी ले रही हैं। ऐसे में जो महिलाएं बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं और कभी कभी वो अपने घर पर भी नहीं बताना चाहती हैं अपनी बचत के बारे में, कई बार इस तरह की परिस्थितियां होती हैं, तो क्या इसमें किसी विटनेस की भी जरूरत होती है जब वो बीमा लेती हैं? किसी के सिग्नेचर चाहिए होते हैं साथ में, या ग्रुप इंश्योरेंस का भी कुछ इसमें हो सकता है?
2: नहीं, इसमें कोई विटनेस की आवश्यकता नहीं है। ये सेल्फ इंड्यूस्ड फॉर्म होता है और उसमें खुद वो अपना डिटेल्स भरे जाते हैं इसमें, और बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है जैसा कि अभी बताया गया आप
1: जी।
2: और सेल्फ हेल्प ग्रुप में तो बहुत ही अच्छा है, जितनी महिलाएं उसके भीतर ग्रुप के भीतर काम कर रही हैं, आई थिंक सारी महिलाएं इस दोनों स्कीम्स का लाभ उठा सकती हैं। और आज के डेट में अगर हम देखें तो पूरे इंडिया में सेल्फ हेल्प ग्रुप एक बहुत बड़ी क्रांति के रूप में हम देखते हैं इसको
1: जी।
2: और उसमें अगर इसको सुरक्षा के मद्देनजर भी अगर ये लाभ भी उनको प्रोवाइड की जाए बैंकों के माध्यम से या अवेयरनेस कैंपेन के माध्यम से उनको इसमें भी जोड़ दिया जाए, एक बहुत बड़ी क्रांति देश के भीतर हो सकती है। देखिए, आज जो भारत के भीतर स्थिति है, आई थिंक 4-5% इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंडिया में है, और जब हम विकसित भारत 2047 की कल्पना कर रहे हैं और उसके भीतर हम काफी काम कर रहे हैं, तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन भी गांव-गांव तक होना चाहिए। और उसमें ये जो प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसके माध्यम से हम जो लोगों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, उनको अवेयर करने का प्रयास करते हैं कि इंश्योरेंस क्यों जरूरी है
1: जी।
2: ये दो स्कीम्स का तो लाभ उनको मिलता ही है, लेकिन इसके माध्यम से उनको ये भी जानकारी मिलती है कि हमें आगे और भी किसी तरीके के इंश्योरेंस कुछ लेने की जरूरत है, आवश्यकता है, तो एक बहुत बड़ा रोल विकास के दर में काम करता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये।
1: और कंपनियां जो हैं, जो कि कुछ इम्प्लॉयज के साथ में काम कर रही हैं, वो हायर करते हैं टैलेंट को, क्या

0: कंपनी अपनी तरफ से उनका इंश्योरेंस करवा सकती है या ये इंडिविजुअल लेवल पर?
1: नहीं, ये होता तो इंडिविजुअल लेवल पे ही होता है, उसके बैंक के खाते से ही होता है
0: जी।
1: और अभी तो जीवन सुरक्षा पोर्टल डेवलप हो गई है जिससे किसी भी तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन नहीं हो, मिस सेलिंग नहीं हो, कस्टमर के कंसेंट लेने के बाद ही इसको दोनों पॉलिसीज को लोगों को मुहैया कराई जाए। और उसके लिए अभी जीवन सुरक्षा पोर्टल में आप लोग अप्लाई करते हैं और उसमें बैंक के जो साथी हैं उसमें मदद करते हैं और उसके बाद उनके कंसेंट के बाद ही ये पॉलिसी ली जाती है। लेकिन जरूर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉइज को मदद करना चाहता है तो वो जो प्रीमियम पे कर रहा है उतनी प्रीमियम राशि वो रीइंबर्स कर सकता है उनको। और आई थिंक बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ये काम भी कर रहे हैं, उनको ये इसका लाभ प्रोवाइड करने के लिए पूरी जो प्रीमियम है वो रीइंबर्स कर देते हैं, उनके खाते में वो क्रेडिट कर देते हैं। ये किया जा सकता है इसमें
0: जी, ये किया जा सकता है जी। कुलभूषण शर्मा जी, आपसे जानना चाहूंगी, जीवन बीमा निगम के बारे में तो भारत में बहुत सारे लोग जानते हैं, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी ये जो ध्येय वाक्य है ये लोगों को रटा हुआ है। ऐसे में जब हमारे बैंक्स भी अब बीमा प्रणाली से जुड़ रहे हैं तो कई बार भारत में क्योंकि इतना विशाल देश है और भौगोलिक विशेषताएं हमारी हैं लेकिन विविधताएं भी हैं उसमें, कई जगह स्थानीय बैंक भी होते हैं जो कि सरकारी बैंक नहीं है, निजी क्षेत्र पर कार्य कर रहे हैं और वो एक छोटे से एरिया को कवर करते हैं। क्या वो इस तरह का बीमा जो है वो करवा सकते हैं या ये योजना वो उपलब्ध करवा सकते हैं, एंटाइटल हैं वो?
2: नीलम जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, क्योंकि आमतौर पर धारणा ये है कि निजी बैंक या जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं शायद अच्छा काम नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में जितने भी बैंक हैं वो आरबीआई के द्वारा नियंत्रित हैं, वो नियामक है, उनके द्वारा ही उनको लाइसेंसिंग किया जाता है। तो यहाँ ये कहना उचित नहीं होगा कि छोटे बैंक या निजी बैंक उस परिधि में नहीं आते हैं। मैं उत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का जो सेंट्रलाइज हब है उसका प्रभारी हूँ
0: जी।
2: मेरे पास इस समय लगभग 130 छोटे बड़े बैंक्स हैं जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का हमारे साथ एमओयू साइन करके कार्य कर रहे हैं। उनका कार्य भी बहुत अच्छी प्रकार से चल रहा है और अखिल भारतीय स्तर पे पंजाब नेशनल बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक ये हमारे उत्तर क्षेत्र एलआईसी से जुड़े हुए हैं जिनका पूरे भारत का कार्य करने का तरीका हम देख रहे हैं
0: जी।
2: कहीं भी हमारी नजर में ऐसा कुछ नहीं आया है कि किसी निजी बैंक ने या किसी सरकारी क्षेत्र के बैंक ने इसमें कुछ त्रुटिपूर्ण कार्य किया हो। तो लोगों को पूरा भरोसा होना चाहिए, हमारी जो भी राजकीय व्यवस्थाएं हैं वो बहुत बहुत सक्षम हैं और जितने भी नियामक हैं वो अपना कार्य भली प्रकार कर रहे हैं। और ये तो योजना ही सरकार की है और इसमें वित्तीय सेवाएं विभाग हमारे मॉनिटर के रूप में काम करता है, समय समय पर इसकी समीक्षाएं की जाती हैं, जो भी आंकड़े हैं उस पर अनुसंधान किया जाता है
0: जी।
2: अगर कुछ ऐसा होता तो आज तक पकड़ में आया होता, तो मुझे लगता है कि हम भरोसा दिला सकते हैं देश की जनता को कि ये जो भी प्रणाली है एकदम बढ़िया कार्य कर रही है और वो चिंता मुक्त होके हमसे जुड़ सकते हैं। कोई भी बैंक हो, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हो, सबको जो लाइसेंस दिया गया है वो एक प्रक्रिया के अंतर्गत दिया गया है और उस प्रक्रिया के अंतर्गत उनका उत्तरदायित्व भी बनता है। यहाँ मैं एक नामांकन के बारे में थोड़ा सा स्पष्टीकरण देना चाहूंगा
0: जी।
2: नामांकन क्योंकि आवश्यक है तो हम चिंता मुक्त हो जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है दुर्भाग्यवश जिस व्यक्ति को नामांकित किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उस स्थिति में मेरा अनुरोध रहेगा कि जो भी इसका बीमा धारक है वो अपना नामांकन परिवर्तन करा ले
0: जी।
2: क्योंकि अगर नामांकन नहीं है वैध रूप से तो मृत्यु की दशा में पैसा किसको दे, ये बैंक के लिए एक संकट की स्थिति उत्पन्न करता है
0: जी।
2: और उसके लिए जो नियम है वो बहुत बहुत सख्त हैं, या तो एक ससेक्शन सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है जो न्यायालय से मिलता है और उसमें बहुत समय लगता है
0: जी।
2: या बैंकिंग प्रणाली में एक और है सर्टिफिकेट ऑफ लीगल हीयर्स, उनके जो भी वारिसों का एक प्रमाण पत्र बनाया जाता है उसको बनाना पड़ता है
0: जी।
2: तो अंग्रेजी में कहते हैं स्टिच ऑन टाइम इज बेटर। तो अगर हम पहले से ही ध्यान रखें, वैध नॉमिनेशन रखें, वैलिड नॉमिनेशन रखें और नॉमिनी की अगर मृत्यु हो जाती है तो तुरंत नया नॉमिनी निर्धारित कर दें, तो ये भुगतान देने में दोनों संस्थाओं को भी आसानी होगी और जो पात्र व्यक्ति है उसको लाभ भी समय अनुसार मिल पाएगा, क्योंकि मृत्यु दावा का भुगतान समय अनुसार होना बहुत आवश्यक है
0: जी। और जो नॉमिनी है उसकी उम्र कुछ भी हो सकती है, वो नाबालिग भी हो सकते हैं।
2: अगर नाबालिग है, मान लीजिए किसी परिवार में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि बालिग नॉमिनी नहीं है, तो उसके लिए एक अपॉइंटी को नियुक्त किया जाता है जो उसके साथ मिलके प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है
0: जी। अभी कुछ समय पहले आपने डेटा बताया कि पूरे देश में इसका लाभ उठा रहे हैं लोग, बेहद जागरूक हैं और ग्रामीण क्षेत्र में भी लोग बढ़ चढ़कर बीमा योजना में हिस्सा ले रहे हैं। तो मैं ह्यूबर्ट सर आपसे जानना चाहूंगी, नॉर्थ ईस्ट का किस तरह का एक्सपीरियंस?

0: Sir, would you like to add something?
1: Thank you, madam, for giving an opportunity. See, India's vision becoming a developed nation depends on empowering every citizen.
0: Ji.
1: Economically, financially empowerment. A developed nation is only possible when each and every citizen is financially strong, financially empowered. We as a banker, as an insurance company, as a post office, we are working on it so that each and every nook and corner of India, the financial accessibility is there.
0: Ji.
1: We are working on it so that each and every individual, whether you are in the rural area, extreme corner of in the northeast, extreme corner in the southwest, that financial accessibility should be there. We are working on it. That is one of the prime goal of our this one. That is financial inclusion. We want each and every individual citizen of India should be financially inclusion, financially strong, economically strong, so that India becomes a developed nation.
0: Ji.
1: We specifically in northeast. Yes, there are difficult terrain, there are difficult road conditions, where financial accessibility is very difficult, where we cannot reach to the villages, which is far away where there is no proper accessibility.
0: Ji.
1: But still then, we try our best as a financial sector, as an insurance company, post office. We ensure that the financial services, banking services, insurance services is reached to the corner. By way of opening customer service points, by way of giving these mitras from time to time, post offices, postmen are reaching there. So not only in Northeast, in other parts, there are also difficult centers. But still then, we are doing our best so that India, everyone is economically strong. Everyone is, the financial services is reached to each and every citizen of India. This is like as a banker, as a financial services, we are working on it.
0: Ji. Thank you so much for sharing it. और जैसा कि प्रधानमंत्री जी कहते भी हैं, जिसे पहले भारत का आखिरी गांव कहा जाता था वो भारत का पहला गांव है माणा. और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हाशिए पर खड़े अंतिम व्यक्ति तक हम जन सेवा जो है वो पहुंचाना चाहते हैं, सुविधाएं पहुंचाना चाहते हैं, यही ध्येय है. तो ये जो योजनाएं शुरू की गई हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इनका लाभ इसी प्रकार से मिलता रहे सभी को. हम आम तौर पर जब दुर्घटना की बात करते हैं, मृत्यु की बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि जब हम बीमा ले रहे हैं यानी हम किसी परिजन की मृत्यु की कामना कर रहे हैं. लेकिन ये भावना नहीं है. ये योजनाएं जो हैं हमें ये बताती हैं कि जब बहुत कठिन समय है, जब चाहकर भी हमारे अपने परिजन कुछ नहीं कर पाते हैं किसी दुख की घड़ी में, जब दुर्घटना के समय शारीरिक दुख वो साझा नहीं कर सकते किसी का, और अचानक जब किसी परिजन की मृत्यु हो जाती है तो उसे टाला नहीं जा सकता, उस समय के लिए मानसिक रूप से हम खुद को तैयार करें, लेकिन आर्थिक रूप से हमें सक्षम बनाए रखने के लिए ये योजनाएं इंट्रोड्यूस की गई हैं. और इसीलिए प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारे बैंक और हमारा बीमा क्षेत्र इस तरह से काम कर रहा है कि देश के कोने कोने तक इनका लाभ पहुंचे. और यही उद्देश्य आकाशवाणी का, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से इस बारे में जागरूकता फैले और लोगों को पता चले कि वो स्वयं भी इसका लाभ ले सकते हैं. और हमारे जो हाउस हेल्प हैं, हमसे जुड़े हुए ऐसे लोग जो असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, निम्न आय वर्ग से हैं, कम पढ़े लिखे हैं, उनको भी हम समझाएं कि किस तरह से इसका लाभ लिया जा सकता है. क्योंकि कोरोना ने भी हमें सिखाया है कि कब एक छोटी सी मदद बहुत बड़ी हो सकती है और कब बहुत बड़ी बड़ी चीजें भी मिलकर हमें वो संबल नहीं दे पाती जो कोई एक व्यक्ति एक सही समय पर आकर हमें देता है. तो यही उद्देश्य हमारे इस कार्यक्रम का भी. हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम से आपको इन योजनाओं के बारे में और बीमा क्षेत्र के बारे में काफी कुछ जानने समझने को मिला होगा. मैं आकाशवाणी परिवार की ओर से सबसे पहले तो अपने विशेषज्ञों का यहाँ पर धन्यवाद करूंगी. इस कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञ रहे हमारे साथ श्री अशोक चंद्र, आप प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंजाब नेशनल बैंक से. हमारे साथ थे श्री कुलभूषण शर्मा, आप जीवन बीमा निगम क्षेत्र से रीजनल मैनेजर आप हैं. श्री ह्यूबर्ट, डिप्टी जनरल मैनेजर उप महाप्रबंधक आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के. और श्री अशोक कुमार, आप सहायक महाप्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से. श्री अशोक चंद्र जी, आप हमारे स्टूडियो आए, आपने इतनी आवश्यक बातें हमें बताई, हमें जरूरी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए.
2: बहुत बहुत धन्यवाद.
0: श्री कुलभूषण शर्मा जी, आपने जीवन बीमा निगम के बारे में भी बताया, लेकिन आपने ये भी बताया कि कैसे परस्पर भरोसा जो है वो रखा जाना चाहिए इस पूरी प्रणाली में. और छोटी छोटी चीजें जो हम बीमा योजना लेते समय पूरा करें, उस कागज को कैसे हमें भरना है, वो कैसे हमारे लिए जरूरी है, ये आपने हमें समझाया, जैसे नॉमिनी के बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए।
2: बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी।
0: अशोक कुमार जी, आपने बहुत अच्छे से सारा डेटा हमारे सामने रखा और हमें बताया कि किस प्रकार से इनका

0: अब लिया जा सकता है? क्या पूरी प्रक्रिया है, कैसे इनरोल करना है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका ह्यूबर्ट सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमें ज्वाइन करने के लिए।
1: धन्यवाद।
0: मैं नीलम मलकानिया पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से अब आपसे अनुमति लेती हूँ। आज का हमारा कार्यक्रम दुर्घटना बीमा, छोटा कदम बड़ा बदलाव, कार्यक्रम प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ और कार्यक्रम संयोजक प्रमोद कुमार वत्स के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।

0: Prime Minister Narendra Modi returns to New Delhi after concluding a successful visit to Indonesia, Australia and New Zealand. Vietnam government orders probe into speedboat tragedy that killed 15 Indian tourists. EPFO introduces Amnesty Scheme 2026 for exempted PF trusts to regularize compliance. Government withdraws 2017 notification imposing travel restrictions on Indian citizens visiting Yemen. Advises
1: Pradhan Mantri Anthony Albanese ke saath teesre Bharat Australia varshik shikhar sammelan mein bhag liya. यात्रा के तीसरे और अंतिम चरण में प्रधानमंत्री ने 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड का दौरा किया. वहां उन्होंने प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की. भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की यात्रा के दौरान हुए महत्वपूर्ण समझौतों के बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण भागीदार देश बनकर उभरा है.
2: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बनके इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं. इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं. प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से, अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क. हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है.
1: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है. इसके तहत आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त छूट के साथ भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर प्रदान किया गया है. श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि ये योजना 6 महीने की अवधि तक लागू रहेगी. मंत्रालय के अनुसार पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन प्रस्तुत करना होगा. देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है. गुजरात में गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया. श्री शाह ने कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया. इधर उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाए गए. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया. एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित प्रस्तावित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने गोवा में 2 दिन की चर्चा पूरी कर ली है. इस दौरान समिति ने राज्य सरकार, राजनीतिक दलों, विधायकों, संविधान विशेषज्ञों, सरकारी उपक्रमों, सामाजिक प्रतिनिधियों और मीडिया के साथ बातचीत की. खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने उपभोक्ता शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं. ये नोटिस खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत नियमों के कथित उल्लंघन के मामले में जारी किए गए हैं. प्राधिकरण ने स्विगी इंस्टामार्ट को विस्तृत स्पष्टीकरण और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. ऐसा नहीं करने पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी. वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुन ने फू क्वोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं. इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई. ये हादसा 36 लोगों को लेकर जा रही स्पीड बोट के अचानक ऊंची लहर की चपेट में आकर पलटने से हुआ. वियतनाम में भारतीय दूतावास ने मृतकों की सूची जारी की है. इनमें से 10 लोग तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल के रहने वाले थे. विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2017 में जारी यमन यात्रा संबंधी अधिसूचना वापस ले ली है. यह अधिसूचना यमन में गृह युद्ध और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण भारतीय नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी की गई थी. हालांकि मंत्रालय ने परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों

Welcome back. This is Akashwani Hyderabad. You're listening to 101.9 FM Rainbow and this is me, RJ Kaivalya. तो हम एक बात बात करेंगे. ये है ना कि हम अक्सर उम्मीद और विश्वास को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में एक बहुत गहरा फर्क है. उम्मीद का मतलब होता है कि हमें लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा. विश्वास का मतलब होता है कि अगर सब कुछ ठीक ना भी हुआ तब भी हम उसका सामना कर लेंगे. उम्मीद बाहर की परिस्थितियों पर टिकती है, जबकि विश्वास अपनी अंदर की हिम्मत पर. सो इफ यू सी वेन एवर यू गिविंग योर एग्जाम और यू आर गेटिंग अ रिजल्ट, तब होती है कि यू नो अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन विश्वास कहता है कि जो भी रिजल्ट होगा उससे सीखकर मैं और बेहतर बनूंगा. शायद इसीलिए मुश्किल वक्त में उम्मीद से ज़्यादा विश्वास काम आता है ना?

Oh, this is me, RJ Kaivalya. So let's talk about, we were talking about thoughts and Schrodinger's cat and whatnot. तो कभी आपने सोचा है कि अगला ख्याल आपके दिमाग में आता कहाँ से है? और अगर आपको जापानीज बिल्कुल नहीं आती, तो क्या आप जापानीज में सोच सकते हैं? शायद नहीं। हमारे विचार ना हवा में से पैदा नहीं होते, वो हमारी यादों, भाषा, पढ़ाई, लोगों और अनुभवों से मिलकर बनते हैं। इसका मतलब जितनी ज्यादा चीजें हम सीखते हैं ना, उतने ही नए नए तरीके से हम सोच पाते हैं। शायद पढ़ाई का असली मतलब सिर्फ इन्फॉर्मेशन जमा करना नहीं होता है, बल्कि अपने दिमाग को नए नए ख्याल पैदा करने की कैपेसिटी देना होता है। क्या बोलते हो? तो अभी इसी बात पे हम एक ब्यूटीफुल मेलोडियस गाना सुनते हैं। चलो।

यू आर लिसनिंग टू कबीरा फ्रॉम द मूवी ये जवानी है दीवानी। तो एक सवाल सोचिए, किसी इंसान के अच्छे इरादे थे लेकिन उसने कभी भी किसी की मदद नहीं की, और दूसरी तरफ एक इंसान ने गलतियां की लेकिन जरूरत पड़ने पर हमेशा लोगों के साथ खड़ा रहा, हम किस इंसान को याद रखेंगे? अक्सर हम खुद को अपने इरादों से जज करते हैं, मेरा मतलब तो अच्छा था, मेरा मतलब वो नहीं था, एट्सेट्रा। लेकिन दुनिया हमें हमारे कामों से पहचानती है। अच्छे इरादे ज़रूरी है, लेकिन जब तक वो एक्शन में ना बदले तब तक उनका असर दुनिया तक नहीं पहुंचता, है कि नहीं? तो इसी बात पर और एक गाना सुनते हैं, ये है खामोशियाँ।

0: मेरा जूता है जापानी, ये पटलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी।
1: चप्पल संगति वच्चिंदी काबट्टी मन श्रोतलकु

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: Where there's water, there's life. Come, let us adopt rain water harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct borewells, remove silt from water bodies, plant as many trees as possible. This monsoon, let us join Catch the Rain campaign.
2: FM Rainbow 101.9.

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: Where there's water, there's life. Come, let us adopt to rainwater harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct borewells, remove silt from water bodies, plant as many trees as possible. This monsoon, let us join Catch the Rain campaign.

బాతల జాతల జీతల జాతల బా, బాతల గేతల బూతల జాతల బా.

0: పదము చేర్చి పాట కూర్చలేదా
1: సుభాష్
0: దనిని.

ये आकाशवाणी हैदराबाद है, एफएम 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। अभी आप मेरे रेडियो साथी यलेश से

जिम हैदराबाद प्रोग्राम समाप्त फरमा रहे थे। सामाइन, ये आकाशवाणी हैदराबाद है FM 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त स्टूडियोज़ की घड़ी में रात के 9:30:30 हुआ चाहते हैं। पेश खिदमत है उर्दू प्रोग्राम नारंग।

अदब इंसानी जज्बात, एहसासात और तजुर्बात का आयनेदार होता है, जबकि फिल्मी गीत इन्हीं जज्बात को मौसीकी के सहारे आम लोगों तक पहुंचाते हैं। जब किसी फिल्मी गीत में आला दर्जे की शायरी, खूबसूरत अल्फाज, गहरा मफहूम और दिलकश अंदाज़ बयान शामिल हो जाए तो वो महज गीत नहीं रहता, एक अदबी तख्लीक बन जाता है।

फिल्मी गीतों में अदबी जादू पैदा करने वाले चंद अहम अनासिर हैं, जो कुछ इस तरह है। खूबसूरत तस्बियात और उस्तेरात, दिलकश अल्फाज, सादा मगर मौसर जबान, खाफिया रदीफ और मौसीकियत, जज्बात की सच्चाई और अक्कासी, फितरत निगारी, मंजरकशी और अलामती और इस्तियारती इजहार, ये

तमाम अनासिर मिलकर फिल्मी गीतों को यादगार और दिलनशी बना देते हैं। सामाइन, आइए अब सुनते हैं फिल्म प्यासा से लिया गया ये लाजवाब गीत। इसके खालिक हैं साहिर लुधियानवी।

फिल्मी गीतों का सबसे बड़ा मौजू मोहब्बत है। शायर मोहब्बत, जुदाई, इंतज़ार, उम्मीद, वफा और कुर्बानी जैसे एहसासात को नहायत ही खूबसूरती से बयान करता है। यही वजह है कि सामे अपने जज्बात को इन गीतों में महसूस करता है और इनसे गहरा ताल्लुक़ कायम कर लेता है।

फिल्मी गीतों ने उर्दू ज़बान को घर घर पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया है। लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने खूबसूरत अल्फाज, मुहावरे, तराकीब और शेरी अंदाज़ बयां फिल्मी गीतों के ज़रिए सीखा है। इस तरह फिल्मी गीत उर्दू अदब की मकबूलियत का मौसर ज़रिया बने। समय आइए अब सुनते हैं आप क्यों रोए फिल्म से लिया गया ये गीत।

गहरी खामोश झील के पानी को यूं न छेड़, छींटे उड़े तो तेरी कबा पर भी आएंगे। दूसरों के मामलात में बिलावजह मुदाखलत, इश्तियाल अंगेजी और बेसबब तनाजात से बचना चाहिए। हर खामोशी कमजोरी नहीं होती और हर सब्र करने वाला बेबस नहीं होता। बाज़ औक़ात किसी पुरसकून इंसान को बार बार आजमाना या उसकी खामोशी को चैलेंज करना खुद अपने लिए मसाइल पैदा करने का सबब बन जाता है। इसीलिए दूसरों के सुकून, इज्जत और हुदूद का एहतराम करें, क्योंकि जो आग हम दूसरों के लिए भड़काते हैं उसकी तपिश खुद हमें भी महसूस हो सकती है।

सामिन, अभी आप पयाम शब समाप्त फरमा रहे थे। तहरीर व पेशकश जनाब जैदी की थी। सामिन, इसी के साथ ही बज़्म नरंग अपने इख्तिताम को पहुंचती है। कल रात 9:30 पर बज़्म नरंग में हमारी दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। शब खैर, आदाब।

0: ये आकाशवाणी हैदराबाद है, FM 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर में रात के 11 बजने वाले हैं। रात के 11 बजे हिंदी समाचार और 11:05 पर अंग्रेज़ी खबरें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: भारत ने कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य जहाजों को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
2: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमेरिकी सेंट्रल कमान ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन

आने वाले जहाजों के लिए खोला है। यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संवाददाता सम्मेलन में ये कहने के बाद आया कि होर्मुस जलडमरू मध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला है। अमेरिकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जलडमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमेरिकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान ने जॉर्डन में एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर भी हमला करने का दावा किया। इस तनाव ने क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन्ह शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरा होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन्ह शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। दुर्घटना में घायल 16 भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का वियतनाम के फू कॉक स्थित अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस बीच वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन्ह हंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। देश भर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विरासत परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्यभर में 21,00,000 पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की योजना है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कल एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग मेघालय सरकार के सहयोग से कल शिलांग में नेक्स्ट जनरेशन प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधार विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। भारत ने चीन के आउटडोर्स में खेली जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने आज अंतिम दिन 2 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Good evening, listeners, and welcome to Market Mantra. Today, being Sunday, we'll be taking calls from our listeners on mutual fund-related queries. But do remember that we do not address stock or company-specific queries. You can call us on 2331-444-2331-0481 and 2371-7106. And of course, do prefix the code 011. I'm Sarabjit Kaur with my co-anchor Subodh Mishra.
1: नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है. आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे. सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444, 2371-0481 और 2371-7106. श्रोता, इससे पहले स्टडी कोड

0: 1111 भी डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट आकार रस्तोगी। आकार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है।
1: जी धन्यवाद।
0: पहले हेडलाइंस के साथ सरबजीत कौर।
2: Foreign portfolio investors turn net buyers after 4 months, infuse more than 15,000 crore rupees into Indian equities so far in July. Situation in West Asia intensifies as Iran once again shuts the Strait of Hormuz in response to United States' fresh airstrikes. And domestic investors to focus on macroeconomic data, first quarter corporate earnings results and geopolitical developments for Q's next week.
0: 4 महीने बाद विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने रुख बदला और इस महीने अब तक भारतीय शेयर बाजार में 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया। पश्चिम एशिया में तनाव गहराया। अमेरिका के ताजा हवाई हमलों के जवाब में ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य फिर से बंद किया और अगले हफ्ते देश के निवेशकों का फोकस रहेगा आर्थिक आंकड़ों कंपनियों की पहली तिमाही के नतीजों और वैश्विक गतिविधियों पर।
2: And before we go any further in the program, may we just once again remind our listeners that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
0: Sarabjit aur hamare callers intezar mein hain.
2: Ji.
0: सीधे चलते हैं उनके पास। यूपी से विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
3: मार्केट मंत्री टीम और आज के एक्सपर्ट को नमस्कार।
0: नमस्कार
3: सर, मेरा प्रश्न ये है, मैं इक्विटी क्लास में एसआईपी के द्वारा मंथली एसआईपी के द्वारा इन्वेस्टेड हूँ और सर बीच में जो मुझे कुछ एरियर मिलता है उसको मैं लमसम अमाउंट में, कम अमाउंट होता है तो उसको लिक्विड फंड में डाल के एसटीपी के माध्यम से मैं अपने करंट जो एसआईपी है, करंट म्यूचुअल फंड है, उनमें इन्वेस्टेड करता हूँ। अब सर चूंकि आईटीआर मुझे फिल करना है तो मैंने एआईएस डाउनलोड किया है, उसमें मुझे सर अपनी म्यूचुअल फंड की एंट्रीज मिली हैं और उसमें सर एक सेल्स कंसिडरेशन और कॉस्ट ऑफ इक्विशन, ये दो मुझे चीजें मिली हैं जिसमें मैंने जैसे 5,000 रुपए का एसटीपी चालू किया हुआ था तो सेल्स कंसिडरेशन में 5,000 और कॉस्ट ऑफ इक्विशन में अमाउंट कम है 4,750 रुपए। तो मैम मुझे क्या टैक्स एप्लीकेबल होगा क्योंकि मैंने तो केवल एक लिक्विड फंड से और अपना जो करंट एसआईपी फंड है उसमें ही इन्वेस्टेड किया है, कोई रिडीम नहीं किया है कोई भी अमाउंट, तो क्या मुझे टैक्स एप्लीकेबल होगा और मुझे उस टैक्स को कहाँ ITR 1, जैसे मैं सैलरीड एम्प्लॉई हूँ तो मुझे ITR 1 फिल करना है तो मुझे उसमें कहाँ शो करना होगा, क्योंकि मैंने AIS डिटेल चेक किया तो उसमें मुझे अपनी एंट्रीज जो भी मैंने लमसम अमाउंट किया था उसको एसटीपी के माध्यम से कई सारी एंट्रीज दी है, मुझे उसको कैसे शो करना होगा, प्लीज गाइड करें।
1: विवेक जी बिल्कुल, आपको इस पे टैक्स देना पड़ेगा। भले ही आपने जो अपनी म्यूचुअल फंड्स में आपकी इन्वेस्टमेंट थी वो आपने रिडीम नहीं की, लेकिन जिस टाइम आपने एसटीपी सेटअप किया और एक लिक्विड फंड से आपका पैसा निकल करके हर महीने जब वो इक्विटी फंड में गया तो भले ही वो एक ट्रांसफर हुआ लेकिन टैक्सेशन पर्पज से उसको एक तरीके से यही माना जाएगा कि लिक्विड फंड में से पहले वो पैसा रिडीम हुआ और उसके बाद जाकर के उस नए इक्विटी फंड में वो पैसा इन्वेस्टमेंट हुई। तो इसके लिए जैसे कि आपने अपने क्वेश्चन में खुद ही बताया कि कुछ 5,000 रुपए का सेल कंसिडरेशन है और 4,700 रुपए का जो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, बेसिकली परचेज कॉस्ट है, तो जो इन दोनों का डिफरेंस है वो आपका मुनाफा है, प्रॉफिट है, जिस पर कि आपको टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स भरने के लिए देखिए, जो डेट फंड्स है, डेट फंड्स पे आजकल जो टैक्स है वो आपके जो भी आपका जो इनकम पे जो स्लैब रेट है, जिस भी आप स्लैब रेट में फॉल करते हैं वही आपको उसी पे आपके लिए टैक्स एप्लीकेबल होएगा। तो सबसे पहले आपको एक दो चीजें करनी चाहिए। एक तो आप कैम्प्स की वेबसाइट पे जाइए और वहां से एक कैपिटल गेन स्टेटमेंट पूरा का पूरा पिछले फाइनेंशियल ईयर के लिए अपना डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि किस फंड पे, इक्विटी पे, नॉन इक्विटी पे आपको कितना कैपिटल गेन है। वहीं पर साथ में जो इस पे आपको टैक्स के लिए जो आपको अपनी आईटीआर में देना है, जो आईटीआर 1 होता है नॉर्मली उसमें जो अगर खाली आपका इक्विटी फंड से कैपिटल गेन होता है 1.25 लाख तक का तो हम रिपोर्ट कर पाते हैं, लेकिन जैसे कि आपके केस में है कि आपने एक लिक्विड फंड में किया था वहां से कैपिटल गेन हुआ है एक

0: नॉन इक्विटी फंड से, तो जहां तक की मेरी जानकारी है आपको आईटीआर 2 में उसको दिखाना पड़ेगा कैपिटल गेन्स के शेड्यूल में। भले ही अमाउंट छोटा सा हो लेकिन उसको हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा और उस पर जो भी एप्लीकेबल टैक्स हो देना पड़ेगा। बाकी टैक्सेशन के लिए एक दफा बेहतर रहेगा कि आप एक टैक्स एक्सपर्ट को भी कंसल्ट कर ले।
1: ऑल राइट, एंड नाउ लेट्स आस्क यशपाल जी, व्हाट इज हिज क्वेश्चन? यशपाल जी सवाल पूछें।
2: गुड इवनिंग मैम।
1: गुड इवनिंग।
2: एक्चुअली माय पोर्टफोलियो इन द म्यूचुअल फंड इज वेल डाइवर्सिफाइड प्रेजेंटली, बट टू हैव मोर स्टेबिलिटी आई वांट टू गो फॉर प्रॉफिट बुकिंग फ्रॉम सम ऑफ द फंड्स वेयर द रिटर्न इज मोर देन 10%, एंड टू इन्वेस्ट इन सम मोर स्टेबल फंड्स लाइक लिक्विड फंड्स, डेट फंड्स, एंड इवन सिक्योर्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ऑल्सो वेयर द इंटरेस्ट रेट इज अराउंड 11% विद ए प्लस रेटिंग। So, my time horizon is around 3 years and I'm 62 years old. Please advise which is better option. Thank you.
0: So, as far as I can understand, you plan to bring some kind of stability in your portfolio. Profit booking just because, you know, you have, crossed a certain threshold of the annual returns which was set in your mind would not be right, to be honest. However, what you should be doing is you should arrive at an asset allocation. At the age of 62, I believe, if this is a portfolio which you also use to derive income, the general equity allocation should be at least 30 to 40% of the complete portfolio. And if it is something that, this portfolio is not something on which you are dependent for deriving a regular income, then probably 50 to 70% can be very much in equity. So first you need to decide on the total asset allocation, and post that, you can transfer the money into the fixed income part. For fixed income, I would say if you have a horizon of 3 to 4 years, a good quality short duration debt fund would be the right choice. Liquid fund is something which can be opted for the expenses which are due within the next year. So, for goals which are falling in 1 year, maybe a liquid fund is fine. Otherwise, go for a short duration debt fund.
3: जी आकार, अभी एक श्रोता जो सवाल पूछ रहे थे हमारे कैपिटल गेन्स के बारे में,
0: हाँ जी,
3: वो हमारे कई श्रोताओं के लिए और हमारे लिए भी बहुत अभी चिंता का विषय बना रहता है जब हमें टैक्स फाइल करने का वक्त आता है तो।
0: जी जी।
3: और सबको लगता है कि भाई वो कैसे होगा, क्योंकि कुछ शॉर्ट टर्म हो सकता है, कुछ लॉन्ग टर्म हो सकता है, और कई दफा होता है कि एमएफ सेंट्रल से जो स्टेटमेंट आता है उसमें नहीं होता। क्या हम इसको अलग अलग जो जहां से हमने डाला हुआ है जिन म्यूचुअल फंड्स में, उन कंपनियों की जो वेबसाइट है अपनी, उन पर भी जाकर ले सकते हैं हम?
0: जी जी बिल्कुल।
3: वो ज्यादा डिटेल में शायद आता है और हर किसी का अलग अलग आता है उसमें। इसमें एक साथ मिल जाता है आपको म्यूचुअल फंड।
0: हाँ जी,
3: हाँ, सेंट्रल में।
0: हाँ जी, हाँ जी। बल्कि अगर आप कैंप्स पे जाएंगे तो कैंप्स पे जाने से सहूलियत ये हो जाती है कि आपको अपने जो भी आपके अक्रॉस द फंड हाउसेज गेन्स है वो सब आपको एक जगह मिल जाते हैं एक स्टेटमेंट में। बट वहीं अगर मान लीजिए अगर किसी ने कुछ 10 फंड हाउसेज के अलग अलग फंड्स में इन्वेस्ट किया है और वो हर फंड हाउस की वेबसाइट पे जाएगा तो उसको 10 तरीके के स्टेटमेंट निकालने पड़ेंगे। यहाँ पे सारे के सारे एक ही जगह मिल जाएंगे और वहां पे पूरा का पूरा मेंशन्ड होता है कि कितना इक्विटी फंड्स में है, कितना नॉन इक्विटी फंड्स में। आप चाहे तो उसको एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। रिटर्न भरते अगर आप खुद जैसे जब रिटर्न भरेंगे तो फिर एक्सेल वाला फॉर्मेट थोड़ा सा ज्यादा सहायता पूर्वक रहता है, वहां पे आप कैलकुलेशन इजिली कर पाते हैं।
3: जी, और अब पहली खबर पे हम नजर डालें आज की कि एफपीआई का रुख बदला है। लगातार 4 महीने तक बिकवाली का दबाव बनाए रखने के बाद विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी एफपीआई ने जुलाई में रुख बदला और इस महीने अब तक उन्होंने भारतीय शेयर बाजार में 15,157 करोड़ रुपए का निवेश किया है। सेमीकंडक्टर्स के वैश्विक व्यापार में कमजोरी से एफपीआई अब फिर से उभरते हुए बाजारों का रुख कर रहे हैं। देश के बेहतर आर्थिक संकेतकों, कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता और तिमाही आमदनी की अच्छी खबरों से विदेशी निवेशकों में उत्साह रहा है। सरकार की टैक्स नीति में बदलाव के बाद विदेशी निवेशकों ने भारतीय ऋण बाजार में लगातार दिलचस्पी दिखाई है। जुलाई में अब तक उन्होंने एफएआर के जरिए 6,625 करोड़ रुपए और जनरल रूट से 3,228 करोड़ रुपए का निवेश किया है।
1: एंड लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट कॉलर रवि फ्रॉम दिल्ली। रवि जी सवाल पूछें।
4: मंत्री जी नमस्कार, ये मेरा पहला सवाल है। जैसे मैं

0: 10,000 रुपये मंथली 1,000 रुपये चला रहा हूँ, तो इसमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है। और दूसरा मेरा सवाल जो ईरान और अमेरिका का ये हॉर्मोस बंद होगा तो मार्केट गिरने की संभावना है या नहीं?
1: ये बहुत अहम सवाल है जो कई लोगों को ये गलतफहमी या खुशफहमी रहती है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट।
2: जी जी बिल्कुल रवि जी, देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कंपाउंडिंग बिल्कुल मिलेगी, लेकिन यहाँ पे जो कंपाउंडिंग मिलने का तरीका है वो एक नॉर्मल एफडी से थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए अगर एकदम सरल भाषा में बात की जाए तो कंपाउंडिंग का मतलब होता है आपके इंटरेस्ट या रिटर्न के ऊपर इंटरेस्ट। अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हैं तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, रिटर्न मिल रहा है तो रिटर्न के ऊपर रिटर्न। एफडी में अगर आपने देखा होगा तो आमतौर पे ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए अगर 1 लाख रुपए की एफडी की और मच्योरिटी पे उसमें 10,000 इंटरेस्ट मिला, तो अगली बार आपको 1,10,000 पे इंटरेस्ट मिलता है, तो वो हो जाता है कंपाउंडिंग। म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि जो भी आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो आपको रोज के रोज आपके एनएवी से डिसाइड होती है, एक एनएवी डिक्लेयर की जाती है जो कि आपके अंडरलाइंग असेट्स की वैल्यू होती है। और यहाँ पे उस एनएवी के थ्रू अंदर ही अंदर जिस तरीके से वो कंपनीज की ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ हो रही है, तो वो वहीं के वहीं कंपाउंड होता रहता है। तो यहाँ पे आपको एफडीज के तरह एक अलग से इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, आपके कोई खाते में एक अलग से नहीं आएगा, लेकिन वो जो एनएवी है वही आपकी कंपाउंड होती रहेगी। तो वो टाइम बाय टाइम आप देखेंगे तो आपको जो एक टोटल मुनाफा होता है वो ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे कंपाउंडिंग थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से काम करती है, बट बेनिफिट वही मिलेगा।
1: जी, और किसी भी सूरत में ये इंटरेस्ट नहीं है।
2: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ये इंटरेस्ट नहीं है।
1: जी
2: और एक दूसरा सवाल था आपका कि अभी जो ईरान में टेंशन चल रही है, वेस्ट एशिया में टेंशन चल रही है, तो अभी मार्केट गिरेगा कि नहीं? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मार्केट एकदम आगे आने वाले समय में कैसा होगा वो मैं क्या आपको कोई भी बहुत ही श्योरिटी से नहीं बता सकता, क्योंकि वो किसी के हाथ में नहीं है। बट हाँ, इसमें कोई शंका नहीं है कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से मार्केट चल रहा है और जिस तरीके से अभी टेंशन्स चल रही है, आने वाले कुछ करीबी समय में मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल जरूर रहेगा। बट एज एन इन्वेस्टर आपको एकदम जब भी इक्विटी में निवेश करें तो एकदम आने वाले एकदम पास के समय के लिए मत करें और ना ही उसकी चिंता लीजिए। आप बस एक डिसिप्लिन तरीके से, आपने एक SIP चालू करी हुई है, आप मैं मानता हूँ आपने जरूर एक अच्छे फंड में निवेश किया होगा, आप बस पूरे दिल से बिना घबराए हर महीने डिसिप्लिन से उसमें निवेश करते रहिए और अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन कम से कम 5 साल रखिए, तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
1: जी, अगले कॉलर हैं कर्नाटक से वीरेंद्र, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
3: गुड इवनिंग मार्केट कंसल्टिंग।
1: गुड इवनिंग
3: आकार जी। आई वांट इन्वेस्ट 4 लाख रुपीज फॉर अबाउट 6 months टू 1 year, विच फंड शुड आई इन्वेस्ट फॉर लमसम?
2: वीरेंद्र जी, योर होराइजन इज 6 months टू 1 year, सो आई वुड से यू शुड डेफिनेटली नॉट गो बियॉन्ड अ लिक्विड फंड व्हेन इट कम्स टू म्यूचुअल फंड्स। सो फॉर सच अ शॉर्ट ड्यूरेशन, लिक्विड फंड वुड बी अ ग्रेट चॉइस। वाइल चूजिंग अ लिक्विड फंड, वॉट यू शुड बी लुकिंग एट इज द एक्सपेंस रेशियो, डेफिनेटली लोअर द बेटर, बिकॉज देयर वोंट बी ह्यूज डिफरेंस इन रिटर्न्स व्हेन इट कम्स टू लिक्विड फंड्स। इनफैक्ट इफ यू सी अ लिक्विड फंड विद you know unusually high return than others, then you should not be opting for it, because while investing in fixed income the main objective should not be to optimize or to maximize your profit or returns, but rather it should be to bring stability and preserve your capital. Alternatively, you can very well go for a fixed deposit for such a short period of time, because when it comes to the taxation, both are on the same level now, but yes, there will be definitely more liquidity and flexibility in mutual funds, because you would not have to commit to a fixed time period, which would be the case in a fixed deposit. And in case if you go for a fixed deposit, say commit a time period and then happen to withdraw it before that, you'll have to pay penalty on the interest amount. If you want to go for liquidity and flexibility, opt for a liquid mutual fund for this duration.
4: All right, let's ask Yogesh ji, what is his query? Yogesh ji, सवाल पूछें।
5: जी नमस्कार आप सभी को, मेरा सवाल ये है कि म्यूचुअल फंड सेंट्रल MF सेंट्रल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं अभी लॉग इन करके पोर्टफोलियो देखने के लिए, MF सेंट्रल का। MF सेंट्रल में एक फीचर आया है जब भी लॉग इन करते हैं कि वॉलेंटरी लॉक इन, तो म्यूचुअल फंड यूनिट को वॉलेंटरी हम लोग एक्स्ट्रा लॉक से लगा सकते हैं, ताकि रिडीम करना उसको मुश्किल हो पाए एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए। ये कितना कारगर है और क्या ये AMC लेवल पर भी

0: काम करता है, सिर्फ एमएस सेंट्रल का अपना फीचर है।
1: नहीं, अभी सेबी द्वारा कुछ टाइम पहले डायरेक्टिव आया था कि अगर आप चाहे तो एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए लॉक इन लगा सकते हैं, जो बेसिकली साइबर फ्रॉड्स होते हैं, कुछ और तरीके के जो इंटरनेट फिशिंग अटैक्स वगैरह होते हैं, कुछ फ्रॉड्स होते हैं, उनके लिए एक ये स्टेप अहेड है। डेफिनेटली एक एडेड फीचर है, एक एडेड सिक्योरिटी है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप चाहे तो, एक वहां से लॉक इन लगा सकते हैं। बट फिर जब भी आपको रिडिम्पशन करना होगा, आपको उससे पहले एक दफा ये लॉक इन खुद हटाना पड़ेगा।
2: जी, अगले कॉलर है राजस्थान से, राजेश, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
3: नमस्ते सर, मैं राजेश कुमार गुप्ता कोटा राजस्थान से बोल रहा था।
2: जी
3: सर, वो मैंने कोटक की एलएस टैक्स सेवर फंड में निवेश किया हुआ है, तो सर अब इसमें रिडिम्पशन का क्या नजरिया रहेगा सर, क्योंकि मार्केट कभी भी स्थिर नहीं रहता, कभी बढ़ता है कभी घटता है, तो इसमें जो टैक्स सेवर फंड है सर, इसमें रिडेम्पशन का कितना अमाउंट निकाल सकते हैं या क्या उचित रहेगा सर?
1: राजेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो टैक्स सेवर फंड है, जो ELSS फंड है, इसमें आपका पैसा 3 साल के लिए लॉक्ड इन है। तो जिस भी तारीख को आपने पैसा इसमें निवेश किया होगा, तब से लेकर के अगले 3 साल से पहले आप रिडीम नहीं कर सकते। अगर आपने लमसम किया होगा तो, और अगर आपने SIP के द्वारा निवेश किया होगा, तो हर SIP इंस्टॉलमेंट की डेट से उस पार्ट के लिए 3 साल वहीं से काउंट होंगे। तो कम से कम सबसे पहले तो रिडिम्पशन के लिए 3 साल का पीरियड होना चाहिए। उसके अलावा देखिए, जो ये फंड है, ये एक अच्छा फंड है, एक एवरेज फंड है, एक प्योर इक्विटी फंड है, जो सारे ELSS फंड्स होते। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान देना चाहूँगा, आपने कहा कि इस वक्त मार्केट कभी भी स्टेबल नहीं है, कभी नीचे कभी ऊपर, इक्विटीज उसी तरीके से होती है, जो मार्केट है उसी तरीके से होता है। शॉर्ट टर्म में अगर आप कभी भी मार्केट देखेंगे इतिहास में उठा करके, तो शॉर्ट पीरियड में हमेशा ऊपर नीचे रहेगा। लेकिन अगर आप वहीं पे एक लंबे समय का उठा करके देखेंगे, 10 साल पहले का उठा करके देखेंगे कि 10 साल पहले मार्केट कहाँ था और आज कहाँ पर है, तो आपको आइडिया लगेगा कि मार्केट ऊपर ही जा रहा है। तो इसमें अगर आपको ज़रूरत है, आप रिडीम करना चाहते हैं, तो मिनिमम 3 साल के बाद आप रिडीम कर सकते हैं। जिस तारीख पे आप रिडीम करेंगे, उस दिन जो NAV होगी उसके हिसाब से, और जो आपके यूनिट्स है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका जो वैल्यू आएगा, उतना पैसा आपको मिलेगा।
4: All right, Akar, we'll continue with the discussions, but first let's take a look at the next big story of the day. Iran's Revolutionary Guard said it had closed the state of Hormuz until further notice and warned of further action if US strikes continued. The United States launched fresh airstrikes on Iran this morning. The airstrikes came after Tehran attacked a commercial vessel in the Strait of Hormuz, setting it ablaze and forcing its crew to abandon ship. U.S. Central Command said it targeted around 140 Iranian military sites, including missile, drone and communications facilities. Iran retaliated with missile and drone attacks targeting Bahrain, Kuwait, Qatar and the United Arab Emirates. Qatar and Kuwait said they intercepted the incoming projectiles, while Bahrain also activated missile alerts. Iran also claimed to have carried out strikes on a U.S. military base in Jordan.
2: अगले कॉलर हैं दिल्ली से, रमेश, स्वागत है आपका, सवाल पूछे।
5: नमस्कार।
2: नमस्कार
5: सर, मैं 70 ईयर ओल्ड सर, मेरी 70 साल सर मेरी उम्र है सर। मैंने कभी म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगाया सर, मेरे काफी दोस्त मुझे कहते रहते हैं लगाओ लगा लो करो, तो थोड़ा थोड़ा सर गाइड करा सकते हैं सर, कैसे लगाएं, किस तरह लगाएं सर, बता सकते हैं प्लीज?
1: जी जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड में, जैसे कि अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाना चाहते हैं, तो जैसे कि अभी हम कुछ एक दो कॉल्स पहले बात कर रहे थे, उसके लिए होराइजन थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा। इक्विटीज में निवेश करने के लिए आपका होराइजन कम से कम 5 साल का होना चाहिए, और वहीं पर मैं समझता हूं कि इवन एट द एज ऑफ 70 एक रिटायरमेंट पोर्टफोलियो में बहुत लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि इक्विटी में निवेश ना करें, बट वो सही नहीं है। आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी बहुत अहम है। अगर लंबे समय के लिए, जैसे जो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स चाहिए, उसके लिए इक्विटी बहुत अहम है। तो शुरुआती तौर पे मैं कहूँगा कि आप बहुत थोड़ा सा पोर्शन लीजिए और किसी भी एक प्लेन इंडेक्स फंड से शुरुआत कीजिए। एक सेंसेक्स का फंड आप ले सकते हैं, या फिर आप एक निफ्टी का फंड ले सकते हैं। ये बहुत ही लो रिस्क इक्विटी फंड्स होंगे इन कंपैरिजन

0: टू अदर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जहां पे फंड मैनेजर्स खुद पैसा मैनेज करते हैं. ये वाले इंडेक्स फंड्स केवल और केवल मार्केट को रेप्लीकेट करेंगे, बट इसका जो प्रपोर्शन है वो बहुत थोड़ा रखिएगा अपने पोर्टफोलियो का, क्योंकि अभी आप एकदम शुरुआत कर रहे हैं. और आमतौर पर एक जो आइडियल एलोकेशन होता है रिटायरमेंट पोर्टफोलियो में वो अराउंड 30-40% होना चाहिए. और वहीं पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि आप एक साथ लमसम इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, उससे बहुत ज्यादा खतरा रहता है कि हम मार्केट के एक गलत लेवल पे एंटर ना कर जाए. जैसे कि मान लीजिए आपने एक बड़ी पूंजी एक साथ इन्वेस्ट कर दी और ठीक एक हफ्ते बाद मार्केट नीचे गिर गया, तो वो एक साथ पूरा पैसा नीचे आते हुए बहुत ज्यादा एक इन्वेस्टर को एंग्जाइटी हो जाती है. तो बजाय उसके अगर हम लोग तोड़ तोड़ के कुछ महीनों में स्प्रेड करके एक SIP के जरिए इन्वेस्ट करते हैं, तो जो हमारा परचेज कॉस्ट है वो एक एवरेज आउट हो जाता है और उससे ये वाला जो रिस्क होता है ये काफी कम हो जाता है. तो अगर एकदम मैं संक्षिप्त में बोलूं तो फिर आप एक सिंपल इंडेक्स फंड से शुरुआत कीजिए, SIP के जरिए कीजिए और थोड़ा सा पैसा पहले निवेश करके देखिए.
1: ऑलराइट, लेट्स आस्क शंकर फ्रॉम भोपाल व्हाट हिज क्वेरी इज. शंकर जी सवाल पूछें.
2: नमस्ते सर, आकाश जी नमस्ते.
0: नमस्कार
2: सर, मेरा सवाल है, ह्यूज फंड्स कमिंग इनटू इक्विटी फंड में आ रहा है इंडिया में म्यूचुअल फंड के थ्रू, जो पहले नहीं होता था. तो इसका लॉन्ग पहले क्या था, छोटे छोटे थोड़ा बहुत इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड तो आते, लेकिन अभी हर कोई आने लगा है. इसका प्रभाव हमारे मार्केट में और रिटर्न पे क्या पड़ेगा, कि क्या अब हर कोई चीज महंगी होती जाएगी? जैसे अमेरिका में हुआ था, अमेरिका इज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग गेटिंग फंड फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड इन देयर मार्केट S&P and Nasdaq, and they are seeing going through roof. So this is the same thing trend is going to continue, or there is actually going to be an effect of performance of a company on the its value. And
0: I would say a huge amount of money coming into mutual funds is one of the function of the increasing awareness. So over the last few years there has been a great awareness इक्विटी में क्यों पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए एंड क्या बेनिफिट होता है. लोग उसके बारे में ज़्यादा ज़्यादा जान रहे हैं और बहुत ज़्यादा ईजी होता जा रहा है इन्वेस्ट करना. मोबाइल फ़ोन से कुछ बटन्स के थ्रू, कुछ ऐप्स के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. बट वहीं पर जो सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज है वो भी बहुत तरीके के प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं. तो इससे आई डोंट सी अ प्रॉब्लम कि कुछ किसी तरीके की दिक्कत होनी चाहिए इन्वेस्टर के लिए. इनफैक्ट इन्वेस्टर्स के लिए मार्केट और अच्छा, उनको कहीं तरह के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं उनको देखने के लिए. बट वहीं पर उनके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो रहा है कि उनको प्रोडक्ट चूज करना पड़ता है कि किस तरीके के फंड में निवेश किया जाए. बट अदरवाइज एज सच कुछ उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए.
3: और देखते हैं अब सोने और चांदी का हाल. इस हफ्ते सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई. MCX में अगस्त अनुबंध के लिए सोने के वायदा भाव में हफ्ते के दौरान 2.6% की गिरावट आई और ये 1,43,478 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ. सितंबर अनुबंध की चांदी वायदा 6.2% गिरकर 2,22,664 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई. कॉमेक्स में अगस्त अनुबंध के लिए सोने के वायदा भाव में हफ्ते के दौरान 0.3% की गिरावट आई और ये $4,113.70 प्रति ट्रॉय आउंस पर बंद हुआ. इसी दौरान सितंबर अनुबंध की चांदी वायदा लगभग 1.5% गिरकर $60.16 प्रति ट्रॉय आउंस पर बंद हुई.
1: और दिल्ली से केशव जी जुड़ चुके हैं. केशव जी सवाल पूछे.
4: हाँ जी नमस्कार. मैं ये पूछना चाहता हूँ सर को, कि जैसे कि जो आप यूडिस के बारे में बताते हैं, अगर किसी ने यूडिस ले भी लिया हो तो उसमें से बाहर निकलना कितना, किस तरह से निकला जाए अगर उसने ले भी लिया तो, यूडिस में क्या क्या नुकसान होते हैं? और दूसरा, एक एजेंट से हमारी मीटिंग हुई थी, एजेंट ने हमें कुछ अपने तरीके से अपने ही तरीके की कंपनियों में बात
0: केशव जी, जहाँ तक की मेरी जानकारी है, यूलिप्स में सबसे पहले तो 5 साल तक का लॉक इन पीरियड होता है कि जो पैसा आप उसमें निवेश कर चुके हैं उसके बाद नहीं निकला जा सकता. बट हाँ, आपके पास एक ऑप्शन जरूर है कि आप आगे आने वाले प्रीमियम्स जो है उसमें आप ना दे, और बल्कि अगर आप जाके एक इंश्योरेंस कंपनी में रिक्वेस्ट करेंगे, वहाँ पे अपना फॉर्म देंगे, तो फिर जो आपका फंड में पैसा है अगर भले ही लॉक इन भी पीरियड में भी होगा, वो उसको उठा करके एक सरेंडर पोर्टफोलियो उनका होता है वहाँ पर डाल देंगे, जिसमें कि आपको इंटरेस्ट काफ़ी कम मिलेगा. लेकिन आपका पैसा वहां से निकला रहेगा।

और आगे आने वाले प्रीमियम आपके जो आप भरेंगे वो बंद हो जाएंगे। आमतौर पे यूलिप इसलिए अच्छा नहीं रहता क्योंकि एक यूलिप जो है हाइब्रिड प्रोडक्ट होता है, ये क्लेम करता है कि आपको इंश्योरेंस भी देगा इन्वेस्टमेंट भी देगा, लेकिन आमतौर पे ये दोनों में ही सक्षम नहीं उठ पाता। इंश्योरेंस के लिए जो एक कवर देता है ये बहुत ही कम देता है। एक यूलिप यूजली जो आपका एक एनुअल प्रीमियम होता है उसका 10 times का कवर देता है, यानी कि अगर आप 1 lakh rupees भरेंगे तो ये आपको 10 lakh का लाइफ कवर देगा, जो कि आमतौर पे काफी कम रहता है। वहीं पर एक प्योर टर्म प्लान लिया जाए तो 1 crore का कवर कुछ अराउंड 12,000 to 15,000 rupees सालाना में मिल जाता है। और बात करें इसके इन्वेस्टमेंट पोर्शन की तो उसके हिसाब से ये काफी एक महंगा प्रोडक्ट रहता है। इसके बाद वहीं पर एक आपका सवाल था कि एजेंट से किस तरीके से डील की जाए।

0: का आपका सवाल था कि एजेंट से किस तरीके से डील की जाए. सो देखिए, वहां पे मेरे लिए सबसे ज्यादा जो मुझे सही लगता है कि आप उनसे क्वेश्चंस पूछिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछिए. हर चीज के जो रिवॉर्ड्स है उसके बजाय उसका रिस्क जानिए और फिर डिसीजन लीजिए.
1: All right, let's take a look at how our markets are expected to show up next week. The domestic markets are expected to take cues from the first quarter corporate earnings results, geopolitical developments, commodity prices, foreign investor activity, progress in monsoon and currency trends in this week. Market participants will closely track key economic indicators, including retail and wholesale inflation data, import-export figures and employment data. Meanwhile, the primary market is set to remain active this week with two upcoming main board IPOs. SBI Funds Management Limited and Alpine Techs World Limited are scheduled to launch their public issues on July 14, with the bidding window closing on July the 16th. Globally, investors will closely monitor geopolitical developments surrounding the West Asia conflict, US consumer price data index, the South Korean Central Bank's interest rate decision and the OPEC monthly oil market report.
2: हाँ, काफी गतिविधियां दिखाई दे रही हैं. आकार, कुछ कहना चाहेंगे आप इस पे?
0: देखिए, इस वक्त जो बहुत जरूरी है वो ये है कि अपने जो फाइनेंशियल प्लान है, जो एक इन्वेस्टमेंट प्लान है इन्वेस्टर के लिए, उस पे टिके रहिए और डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करें, पैनिक ना करें.
2: जी आकार, आज वक्त इतना ही है. कार्यक्रम में आने और श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
0: जी धन्यवाद.
1: Listeners, before we wrap up today's show, a reminder of the headlines. Foreign portfolio investors turn net buyers after 4 months, infuse more than 15,000 crore rupees into Indian equities so far in July. Situation in West Asia intensifies as Iran once again shuts the Strait of Hormuz in response to United States' fresh air strikes. And domestic investors to focus on macroeconomic data, first quarter corporate earnings results and geopolitical developments for cues next week. That's all in today's edition. Goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.
4: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

11:40 हो चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर स्वागत है आप सबका। प्रोग्राम गीत मेरे मन मीत आपके साथ मैं विकास।

1975 की यह फिल्म थी और फिल्म का नाम था जूली, और किशोर कुमार साहब और लता जी की ये बेहद खूबसूरत सी आवाज़ थी। अगली जो पेशकश आप तक पहुंचती है वो पहुंचती है पर्दे पर, आपको दिखते हैं देवानंद और फिल्म का नाम है हीरा पन्ना। 1974 की ये फिल्म है और बेहद बेहद खूबसूरत सा संगीत।

तमन्ना तो मेरी भी थी कि कुछ और देर आपके साथ बना रहूं, कुछ और गीत आप तक पहुंचाऊं, लेकिन घड़ी बता रही है कि विकास अब जाने का वक्त स्टूडियो से हो चुका है, इस वादे के साथ कि आप रखेंगे अपना ख्याल, उनका ख्याल जो रखते हैं आपका ख्याल। विकास को दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: जाके दिल की तमन्ना थी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडोमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
2: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमेरिकी सेंट्रल कमान ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जलडमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमेरिकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान ने जॉर्डन में एक अमेरिकी सैन्य हवाई अड्डे पर भी हमला करने का दावा किया। इस तनाव ने क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन्ह शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक

0: औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन्ह शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। देश भर में पौधे लगाने के लिए व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने के लिए प्रति चिंतित है।
1: जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा जलवायु संकट गहराएगा और ये नुकसान 2100 तक बढ़कर जीडीपी में जो कमी हो रही 20% तक पहुंच सकता है। आप कल्पना कीजिए क्या होगा। यह आर्थिक संकट इतना बड़ा होगा कि इसको मुकाबला करना फिर कठिन हो जाएगा। और इसलिए वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग मेघालय सरकार के सहयोग से शिलांग में नेक्स्ट जनरेशन प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधार विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन आज से कर रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। भारत ने चीन के ओरडोस में खेली जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने कल अंतिम दिन 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
1: पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
2: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम मलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। साथियों, जैसा कि हम जानते ही हैं कि हमारा ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के मन की बात का विस्तार है। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में इस बार बीमा सेक्टर के बारे में बात की है और ये भी बताया है कि किस तरह से दुर्घटना के समय जो बीमा राशि मिलती है वो हमारा बहुत बड़ा संबल बनती है और किस तरह से अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग दुर्घटना के समय या फिर उससे पहले छोटी छोटी जो प्लानिंग्स करते हैं वो हमें बहुत ज्यादा साथ देती है, हिम्मत देती है, जीवन में आगे बढ़ने का संबल उसी से हमें प्रदान होता है। तो प्रधानमंत्री जी ने जिस सेक्टर का जिक्र किया है, हम कितना जानते हैं इसके बारे में और क्या हमारे मन में सवाल हैं, उन सबके जवाब आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं। पहले मैं अपने विशेषज्ञों का परिचय आपसे करवा देती हूँ। इस विषय के बारे में हम ज्यादा जानेंगे, हमारे विशेषज्ञ हमें बताएंगे। हमारे साथ हैं श्री अशोक चंद्र, आप प्रबंध निदेशक हैं, मुख्य अधिकारी हैं पीएनबी बैंक से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
3: धन्यवाद मैडम।
2: हमारे साथ हैं श्री कुलभूषण शर्मा जी, आप जीवन बीमा निगम से हैं, रीजनल मैनेजर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
4: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हमारे साथ डिप्टी जनरल मैनेजर हैं SBI से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, श्री ह्यूबर्ट। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत स्टूडियो में।
5: थैंक यू मैडम।
2: श्री अशोक कुमार हैं, आप AGM हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, सहायक महाप्रबंधक। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत।
6: थैंक यू मैम।
2: तो ऐसा करते हैं श्रोताओं, सबसे पहले हम मन की बात का वो हिस्सा सुनते हैं जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने बीमा क्षेत्र का जिक्र किया है, दुर्घटना बीमा का उल्लेख किया है।
7: मेरे प्यारे देशवासियों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक परिवार ने अपनी खुशियां बांटने के लिए ऐसा काम किया है जो चर्चा का विषय बन गया है। यहाँ नांदेड़ के

0: हदुरपुरा गांव में पेटकर परिवार रहता है। इस परिवार ने सोचा कि अगर खुशी बांटनी ही है तो ऐसी चीज दी जाए जो मुश्किल समय में किसी परिवार का सहारा बने। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3,500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा कवर दिया गया। इस पहल के पीछे की भावना बहुत स्पर्श करने वाली है। परिवार ने देखा था कि दुर्घटना के बाद परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में एक छोटी सी सहायता भी बहुत बड़ा संबल बन जाती है। साथियों, सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपए के सालाना प्रीमियम पर 2,00,000 रुपए तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनमें करीब 28 करोड़ हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, महिलाएं हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को अब तक जो हिसाब मिला है, 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। साथियों, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपए है, मतलब एक दिन का मुश्किल से 1.5 रुपया। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11,00,000 परिवारों को करीब 22,000 करोड़ रुपए की सहायता मिल चुकी है। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। इन आंकड़ों के पीछे लाखों परिवारों की अपनी अपनी कहानी है। कहीं किसी माँ को बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिल गई, कहीं किसी पत्नी को घर की जिम्मेदारियां संभालने का सहारा मिल गया। साथियों, कई बार बहुत बड़ी सुरक्षा की शुरुआत बहुत छोटी राशि और एक छोटे से कदम से हो सकती है। छोटा सा भी निर्णय बहुत बड़ा बदलाव करता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में इन योजनाओं की जानकारी जरूर साझा करें।
1: तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का उल्लेख किया, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा का उल्लेख किया और साथ ही हमें प्रेरित किया कि इस क्षेत्र के बारे में हमारी जानकारी और बढ़े। तो इनके बारे में तो हम बात करेंगे ही, लेकिन आइए साथियों, पहले बात करते हैं दुर्घटना बीमा की। छोटा कदम बड़ा बदलाव कैसे बनता है, हमारे विशेषज्ञ हमें बताएंगे। और मैं सबसे पहले अशोक चंद्र जी आपसे ही जानना चाहूंगी कि अगर हम दुर्घटना बीमा की बात करते हैं तो नाम थोड़ा सा डराता है, ऐसा लगता है कि कोई दुर्घटना हो जाए उसके बाद हमें कुछ राशि मिलेगी तो दुर्घटना ही क्यों हो। लेकिन सच्चाई ये है कि जीवन में हम इन चीजों से बच भी नहीं सकते, जब बुरा समय आता है तो बताकर नहीं आता। और ऐसे में जहां हमें संगी साथियों की, परिजनों की जरूरत पड़ती है, वहीं जरूरत पड़ती है कुछ धनराशि की भी जो हमें हौसला दे। तो मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आम नागरिकों के जीवन में लाइफ इंश्योरेंस जो है उसका क्या महत्व है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपने जिक्र किया, आई थिंक माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 जून 2026 के मन की बात कार्यक्रम में दो चीजों का उन्होंने उल्लेख किया, प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना और प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना। और ये दोनों जो स्कीम्स हैं ये लोगों की लाइफ से जुड़े हुए हैं, और किसी तरीके की अनहोनी अगर होती है आपके लाइफ में तो आपके परिवार को कैसे एक आर्थिक मदद मिले, उसके अंतर्गत ये दोनों कार्यक्रम, दोनों जो स्कीम्स हैं उसके भीतर आती हैं। और इसके माध्यम से आई थिंक बहुत बड़े सेक्शन को कंट्री के भीतर, पॉलिसीज के भीतर, जीवन बीमा के भीतर हम उनको कवर कर सकते हैं, और उनको एक किसी भी चैलेंजेस अगर आती हैं लाइफ में तो उसको हम उनके माध्यम से मदद कर सकते हैं
1: जी।
2: और इसका इम्पोर्टेंस यह है कि देखिए लाइफ में वित्तीय समावेशन

0: के अंतर्गत हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वित्तीय सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा लाइफ का एक पहलू होता है, जीवन सुरक्षा जिसको हम बोलते हैं, और उसके अंतर्गत ये जो एक स्कीम है प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसमें 18 साल से 50 साल के लोगों को 436 रुपए में 2 लाख तक के इंश्योरेंस कवर दिए जाते हैं, और वैसा ही है प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना, जिसके अंतर्गत 20 रुपए में आप किसी भी तरीके की अगर दुर्घटना हो जाती है, और दुर्घटना से आप अगर डिजेबल हो जाते हैं या आप असामयिक देहांत हो जाता है, तो उसमें भी आपके जो परिवार वाले हैं जिसको आपने नॉमिनेशन किया है उनको भी 2 लाख का ये मदद मिलता है। इस कार्यक्रम को मैं इससे देखता हूं कि जब आप 12 साल पहले अगर जाएं, 2014 में जब फाइनेंशियल इंक्लूजन कंट्री के भीतर स्टार्ट किया गया, वित्तीय समावेशन जिसे हम बोलते हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना का विस्तार किया गया, जिसमें आज करीब 56 करोड़ लोग बैंक की प्रणाली से जुड़े हैं
1: जी,
0: और उसमें करीब 2,67,000 करोड़ की डिपॉजिट उन स्कीम्स में मौजूद है, तो उसको ही आगे कैसे ले जाया जाए, उन लोग जो बैंक के से जुड़े और बैंक में खाता उन्होंने खोला, तो बैंक का खाता खोलना तो एक इमीडिएट एक रिक्वायरमेंट थी और उसमें हम लोगों ने उसमें मदद की लोगों को खाता खोलने में, लेकिन उसको और आगे लेकर कैसे जाएं, उसमें ये जो 2 स्कीम्स हैं जो सुरक्षा आपको प्रोवाइड करती हैं उसको आगे ले जाने का प्रयास स्कीम्स के माध्यम से किया जा रहा है। और मेरा इस कार्यक्रम के माध्यम से जरूर अनुरोध होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इन 2 स्कीम्स से जुड़े। आई थिंक इतनी कम राशि में आपको 2 लाख का इंश्योरेंस कवरेज
1: जी,
0: एक तो दुर्घटना के लिए और एक जो टर्म लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं वो
1: जी,
0: आई थिंक किसी भी इंश्योरेंस स्कीम में नहीं मिल सकती है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इन स्कीम्स के साथ जुड़े और इन स्कीम्स का लाभ उठाएं
1: जी। तो यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कुलभूषण शर्मा जी, जब हम बात करते हैं वित्तीय समावेशन की, ऐसे में हमारे देश में जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो स्थापित काम कर रहा है, उनके लिए फिर भी ये बात सरल लगती है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जिनका बहुत ही संगठित क्षेत्र में जो काम नहीं कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वित्तीय समावेशन में क्या हम उन्हें भी शामिल कर रहे हैं इन पॉलिसीज के थ्रू?
2: मेरे विचार में वित्तीय समावेशन में जब जीवन बीमा के हितलाभों को जोड़ा गया, तो शायद प्रधानमंत्री महोदय अपने एक दीर्घकालिक एजेंडा के तहत ग्रामीण क्षेत्र को या उन क्षेत्रों को जोड़ना चाहते थे जिनको इंश्योरेंस कंपनीज टारगेट नहीं कर रही थी, उनका लक्ष्य नहीं ले रही थी, क्योंकि माना यह जाता था कि उनकी भुगतान योग्य क्षमता कम है, इसलिए कम राशि में बीमा किया गया। मेरे विचार में शायद हमारे देश की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे सस्ती ग्रुप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, और 20 रुपए में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी शायद पूरे विश्व की सबसे सस्ती इंश्योरेंस पॉलिसी होगी
1: जी।
2: जहां तक ग्रामीण क्षेत्र का सवाल है, मुझे लगता है हमें अपने लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है, क्योंकि किसी भी मानव का अपने परिवार के लिए 2 प्रकार का मूल्य है। पहला भावनात्मक, जो कोई किसी का माता है, पिता है, बेटा है, बेटी है। दूसरा है उनका कोई ना कोई वित्तीय मूल्य है, जिसे हम ह्यूमन लाइफ वैल्यू में आंकते हैं मानव जीवन मूल्य के आधार पर। मैं जितना अपने परिवार के लिए कमा के देने वाला हूँ वो मेरा मानव जीवन मूल्य है, अगले 10 वर्ष में मैं कितना कमाने वाला हूँ ये मेरे मानव जीवन मूल्य का आंकलन हो सकता है। और मान लीजिए मेरी अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो मेरे परिवार को एक वित्तीय क्षति होती है जिसके लिए बीमा समाधान उपलब्ध है। 2 लाख का बीमा समाधान सस्ता है, लेकिन ये जानने की आवश्यकता है कि क्या 2 लाख पर्याप्त है, इसलिए शायद 2 संदर्भ में इसको किया गया। 2 लाख का जो जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ है
1: जी,
2: उसमें हमने किसी भी प्रकार की मृत्यु को कवर किया है, और दुर्घटनावश मृत्यु के लिए हमने 20 रुपए में 2 लाख का और कवर किया है। ये प्रत्येक व्यक्ति को लेना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस है, और इसके बारे में हम जितनी जागरूकता फैलाएंगे उतना बढ़िया होता जाएगा। और आज के डेट में अगर हम आंकड़ों के आधार पर बात करें तो वित्तीय सेवाएं विभाग की तरफ से जो आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं नवंबर 2025 के अनुसार 25 करोड़ 79 लाख लोग इस बीमा योजना से जुड़ चुके हैं
1: जी।
2: अभी तक 10,02,628 मृत्यु दावों का भुगतान किया गया है, जो विश्वास बढ़ाता है इस प्रणाली में कि बीमित लोगों को जब भी इस तरह का कोई अकस्मात इमरजेंसी आएगा तो भुगतान किया जाएगा
1: जी। तो भरोसा बढ़ता है इससे। यहाँ अशोक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पिछले कुछ वर्षों से अगर हम तुलना करें तो भारतीय बीमा बाजार में आप क्या बड़े बदलाव देख रहे हैं? अब लोग इंश्योरेंस को लेकर थोड़ा अवेयर हुए हैं क्या? और जिस तरह से अर्निंग को लेकर बहुत कॉशियस रहते हैं, वैसे सेविंग्स के साथ साथ क्या इंश्योरेंस की तरफ भी उनका ध्यान बढ़ा है? क्या कहेंगे आप?
3: धन्यवाद नीलम जी। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में कहा था कि पीएमजेजेवाई और पीएमएसवी ये भी इंश्योरेंस की एक स्कीम्स हैं जो कि अफोर्डेबल कीमत पर

0: लोगों को उपलब्ध आती हैं।
1: जी,
0: तो ये जो हमारा वित्तीय समावेशन है कि भारत को अगर विकसित राष्ट्र बनाने का सपना है तो इसमें हर नागरिक को आर्थिक रूप से सशक्त करने पर जोर देना पड़ेगा, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। इसे हासिल करने के लिए उन्होंने वित्तीय समावेशन का नियम फार्मूला लाए।
1: जी,
0: इसको उपयोगी कैसे करें, वित्तीय समावेशन क्या है, कैसे इसको ले आ पाए, तो वित्तीय समावेशन का मतलब है कि उपयोगी और किफायती वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना, जैसे बैंकिंग, ऋण, बीमा, डिजिटल भुगतान, खासकर कमजोर वर्गों और कम आय वाले समूह के लिए उचित लागत पर
1: जी
0: कम से कम उनको खर्च करना पड़े। भारत में वित्तीय समावेशन के तहत जो बीमा योजना उपलब्ध है उसमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये दोनों इसमें उपलब्ध है। आप अगर इसको देखें कि अभी तक हमारे पास 31 मार्च 26 तक हमारे देश में कितना पीएमजेजेबीवाई और कितना पीएमएसवीवाई लोगों को उपलब्ध हुआ है,
1: जी
0: तो पीएमजेजेबीवाई 23,35,00,000, ये फिगर है जो अभी तक हमारे देश में 31 मार्च 26 तक दी जा चुकी है।
1: जी,
0: पीएमएसवीवाई 53,97,00,000, इतने लोगों को ये सुविधा उपलब्ध है। टोटल इसको अगर इस तरह से देखें कि इसमें पीएमजेजेबीवाई और एसबीआई पूरे जो समूह है उसमें बैंक और पोस्ट ऑफिस सभी इसको उपलब्ध कराते हैं, तो सभी को टोटल मिला के ये संख्या उपलब्ध कराई है। इसमें हमारे एसबीआई का अगर आप शेयर देखें
1: जी,
0: तो लगभग पूरे बैंकिंग क्षेत्र में हमारा 35% का शेयर है और 30% का शेयर पीएमएसबीवाई में है। इसको अगर समझें कि पीएमजेजेबीवाई क्यों जरूरी है, तो पीएमजेजेबीवाई इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे यहाँ कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं है लोगों के लिए, कोई सामाजिक सुरक्षा स्कीम हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लिए या कम निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए हमारे भारत में उपलब्ध नहीं है। और अगर उनका कोई व्यक्ति जो मेन कमाने वाला घर का मुखिया होता है उसकी किसी कारण से दुर्घटना होने पे या दुर्घटना होने पे उसका किसी तरह की क्षति होती है, मान लीजिए कि उसका आधा पैर हाथ या इस तरह की दुर्घटना में उसको जो काम करने की है उसकी क्षति होती है, तो उसको कोई बीमा किसी तरह का नहीं मिलता है। इसी तरह अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के लिए कोई सुरक्षा उपलब्ध नहीं होती है। और हमारे देश में ज्यादातर लोग ग्रामीण क्षेत्र में या निम्न आय वर्ग के लोग हैं जिनके पास इस तरह की कोई सुरक्षा बीमा उपलब्ध नहीं है।
1: जी,
0: तो इसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने एक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो की थी, ये पूरी तरह लाइफ इंश्योरेंस है और इसमें सिर्फ ₹436 एनुअल प्रीमियम है, वार्षिक प्रीमियम सिर्फ ₹436 है। इसको भुगतान करके कोई भी व्यक्ति इसको ले सकता है। उसके साथ सिर्फ एक ही कंडीशन है कि उसका बैंक में खाता होना चाहिए।
1: जी,
0: ये उसकी कंडीशन है। और ₹436 में लेने के बाद एक साल के लिए उसको ₹2,00,000 का बीमा पूरे एक साल के लिए मुफ्त है कि अगर उसके साथ कुछ भी घटित होता है
1: जी,
0: तो उसका ₹2,00,000 उसके नॉमिनी को प्राप्त हो जाए।
1: जी, तो मैं अशोक जी अब आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग और जो निम्न आय वर्ग है उन्हें इसका लाभ मिल रहा है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या महानगरों में रहने वाले जो लोग हैं जो कि इसी तरह का असंगठित क्षेत्रों में जो काम करते हैं या श्रमिक हैं, मजदूर हैं, क्या वो भी इसका लाभ ले सकते हैं?
2: या बिल्कुल, इस स्कीम में केवल एक ही क्राइटेरिया है, आपका बैंक में अकाउंट होना चाहिए
1: जी,
2: और एज जो है प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना के भीतर 18 साल से 50 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए, और अगर आपने ये लिया हुआ है तो 55 साल तक आप इसको अवेल कर सकते हैं
1: जी।
2: दूसरा, इसमें और कोई किसी भी तरीके के प्रतिबंध नहीं लगे हुए हैं, और जैसा कि हमारे शर्मा जी ने भी बताया आपको कि बहुत ही सुगम है, बहुत ही सरल है, और इतने कम रुपए में आप कोई ऐसी स्कीम के अंतर्गत आप इंश्योरेंस नहीं ले सकते हैं
1: जी।
2: मैं देख रहा था कि ₹436 जीवन ज्योति बीमा योजना के भीतर है और ₹20 जीवन सुरक्षा बीमा योजना के भीतर है, और अगर आप चाहें तो दोनों आप एक साथ ले सकते हैं, तो टोटल आपकी जो खर्च होती है वो ₹456 खर्च होता है
1: जी।
2: आप 365 दिन से अगर आप इसको डिवाइड कर दें तो ₹1.24 ₹1.25 में आपको ये स्कीम ₹2,00,000 का कवरेज आपको मिल रहा है
1: जी।
2: तो मेरा मानना है कि जितने लोग हैं और जिस आयु वर्ग में 18 से 50 साल के इस ग्रुप में है, आई थिंक उनको तो ये जीवन ज्योति बीमा योजना तो लेना ही चाहिए, और ये गांव में तो है ही, शहर में भी है, इनफैक्ट सारे सर्विस सेक्टर में भी जो लोग काम कर रहे हैं हम लोगों ने खुद लिया हुआ है
1: जी।
2: मैंने अपना खुद इंश्योरेंस कवरेज दोनों स्कीम में लिया हुआ है, तो इसका लाभ तो हमारे देश के सारे नागरिक इसका लाभ ले सकते हैं, और यही इसकी खूबसूरती है। कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको लें और एक सुरक्षा कवच के रूप में एक अपने नॉमिनीज को प्रोवाइड करें।
1: जी, जैसा कि आपने कहा कि बहुत ही कम हमें इसके लिए भुगतान करना है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि छोटा कदम बड़ा बदलाव, कि बहुत ही छोटा सा

0: अमाउंट एक देना होगा। मैं आपसे जानना चाहूंगी कुलभूषण जी, जैसा अभी सर ने बताया अशोक चंद्र जी ने कि हम लोग जो सर्विस सेक्टर में हैं हम भी ले सकते हैं, मैं जानना चाहूंगी आप डिटेल में इस बारे में बताएं कि एक परिवार में क्या ऐसा कोई नियम है कि एक ही व्यक्ति ले सकता है, जो परिवार का मुखिया है वही ये बीमा ले सकता है, और इसके लिए क्या कोई आय प्रमाण पत्र जमा करवाना होता है, क्या प्रक्रिया है?
1: जहां तक प्रधानमंत्री योजनाओं का संदर्भ है, दोनों ही योजनाओं में किसी प्रकार का आय का प्रमाण पत्र नहीं देना पड़ता
0: जी।
1: किसी भी प्रकार का सदस्यों के रूप में संख्या का कोई नियंत्रण नहीं है, कोई भी व्यक्ति जिसके पास खाता है, जो खाता धारक है, वो उसे ले सकता है
0: जी।
1: केवल एक शर्त है, एक व्यक्ति एक से ज्यादा बार ये लाभ नहीं ले सकता। जैसे मान लीजिए कोई ग्राहक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उनका खाता है और पीएनबी में भी खाता है, तो दोनों जगह से दो दो लाख का वो बीमा नहीं ले सकता
0: जी।
1: इसके अलावा और कोई भी इस पे किसी भी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। परिवार के अगर 10 सदस्य हैं तो 10 के 10 अगर वो खाता धारक हैं
0: जी
1: तो बीमा ले सकते हैं, और प्रीमियम देने की दशा में प्रीमियम की कटौती होना पर्याप्त है मृत्यु की दशा में बीमा राशि देने के लिए। इसके अतिरिक्त हम कुछ भी नहीं मांगते। हाँ, मृत्यु प्रमाण पत्र मांगा जाता है, नामांकित व्यक्ति का केवाईसी मांगा जाता है जिसमें उनका आधार कार्ड वैध है और उनके खाते का होना, और खाते को नेफ्ट किया जाएगा, सीधा ग्राहक के खाते में पहुंचता है पैसा, उसका पंजीकरण किया जाना आवश्यक होता है। केवल इतनी ही शर्तें इस पे लागू हैं।
0: जी, अगर उन्होंने पहले से प्राइवेट सेक्टर में कोई बीमा लिया है तो क्या वो एक अवरोधक है या उसके साथ ही बीमा लिया जा सकता है?
1: चाहे उन्होंने निजी क्षेत्र में लिया हो या सरकारी क्षेत्र में लिया हो
0: जी।
1: अगर पीएमजेजेवाई के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का बीमा लिया गया है तो उसकी इस पे कोई भी बाध्यता नहीं है। ये 2 लाख का बीमा राशि पीएमजेजेवाई में और 2 लाख की बीमा राशि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में उपलब्ध है
0: जी। अशोक जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं, इंश्योरेंस सेक्टर में पिछले दिनों आपने क्या ऐसा बड़ा बदलाव देखा है? क्या अब आपको ऐसा लग रहा है कि युवा भी इस ओर आकर्षित हो रहे हैं और वो जागरूक हैं बीमा के बारे में?
2: बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया नीलम जी आपने। जैसा कि आपने देखा कि अभी कुछ दिन पहले हमारा देश कोरोना जैसी महामारी से गुजरा है
0: जी।
2: तो जब कोरोना में बहुत सारे हमारे देशवासियों की मृत्यु भी हुई और बहुत सारे लोगों का अपना कार्ड छूटा, तो इन परिस्थितियों में ये जिसने जीवन ज्योति बीमा योजना में पहले से नामांकन किया था हमारे देशवासियों ने, उनके परिवारों को कुछ आर्थिक मदद मिली। तो इसमें नामांकन करने के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दोनों में जितना अधिक से अधिक लोगों ने नामांकन किया है उसी हिसाब से उसी रेशियो में कंपनियों ने उनको भुगतान किया, और इसमें भुगतान का जो रेशियो है वो काफी अच्छा है
0: जी।
2: कि इसमें क्लेम तुरंत हो जाता है और बहुत समय नहीं लगता, लगभग 1 माह के अंदर क्लेम नॉमिनी को मिल जाता है। पहले मैं इस स्कीम के बारे में थोड़ा सा डिटेल से आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में कौन एनरोलमेंट कर सकता है, कैसे कर सकता है और कितनी उम्र तक ये वैलिड है
0: जी।
2: तो इसमें जीवन ज्योति बीमा योजना ये पूरी तरह से बीमा योजना है। इसमें किसी भी कार्ड से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए का कवर प्रदान करती है। इसमें कुछ नहीं पूछा जाता कि मृत्यु कैसे हुई। इसका प्रीमियम मात्र 436 रुपए है, साल भर के लिए है। अगर किसी ने बीच में प्रीमियम लिया है तो उसको प्रोरेटा पे वो कम हो जाता है
0: जी।
2: और 1 जून से 31 मई हर साल उसके लिए वैलिड होती है। इसका जो प्रीमियम है वो ऑटो डेबिट माध्यम से मई के 31 मई के आसपास आपके खाते से डेबिट होता है। तो सभी भाइयों ने जिन्होंने अभी तक स्कीम ली है उनसे अनुरोध है कि वो कृपया ये सुनिश्चित करें कि जब भी मई महीने में इसका रिन्यूअल आए तो अपने खाते में सफिशियंट बैलेंस रखें, क्योंकि अगर एक बार रिन्यूअल में पैसा नहीं कटा तो पॉलिसी लैप्स हो जाएगी, तो फिर से आपको पॉलिसी लेनी पड़ेगी। तो पहला तो इसमें ये ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरा, इसमें जो एनरोलमेंट कर सकते हैं, जैसा कि सर ने बताया था कि 18 से 50 वर्ष की उम्र का कोई भी व्यक्ति जिसका बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता है वो इसमें एनरोल कर सकता है। ये स्कीम 55 साल तक लागू रहती है। अगर आपने 18 से 50 साल के बीच में एनरोलमेंट कर लिया है तो स्कीम का लाभ आप 55 साल की उम्र तक ले सकते हैं। इसमें सभी प्रकार के खाते कवर होते हैं। बैंक में आपका ओडी है, केसीसी है, किसान क्रेडिट कार्ड है, सेविंग बैंक है, चालू खाता है, सभी खाते इसमें कवर है। आपका बैंक में खाता होना चाहिए। जो इसकी पॉलिसी है उसमें एक 30 दिन का कूलिंग पीरियड रहता है कि अगर उस पीरियड में कुछ बात होती है तो उसके बाद आपको वो पैसा मिलेगा, इसलिए जितनी जल्दी हो जाए इसमें एनरोलमेंट कर लेना चाहिए
0: जी।
2: दुर्घटना की स्थिति में ये तुरंत लागू हो जाता है, जैसे ही आपने किया है ये उसी दिन से इफेक्टिव हो जाएगा। अब बात करते हैं सुरक्षा बीमा योजना की। तो सुरक्षा बीमा योजना ये एक तरह से पूरी तरह दुर्घटना बीमा योजना है। इसमें किसी भी प्रकार से आकस्मिक मृत्यु होने पर या विकलांगता की स्थिति।

0: में 2 लाख रुपए का कवर प्रदान करते हैं
1: जी।
0: इसका प्रीमियम मात्र 20 रुपए है, साल भर का प्रीमियम मात्र 20 रुपए है और इसमें 18 से 70 वर्ष के बीच का कोई भी व्यक्ति ले सकता है, सब्जेक्ट टू कि उसका खाता बैंक में या पोस्ट ऑफिस में होना चाहिए
1: जी।
0: ये आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता दोनों को कवर प्रदान करती है। 18 से 70 वर्ष के जो भी खाता धारक हैं और किसी भी तरह का उनका बैंक में खाता है, KCC है, किसान क्रेडिट कार्ड है या चालू खाता है, बचत खाता है, वो इसके लिए एलिजिबल है, वो इसमें तुरंत एनरोलमेंट करा सकते हैं
1: जी।
0: ये पॉलिसी भी 1 जून से 31 मई तक के लिए वैलिड होती है और मई महीने में इसका फिर से रिन्यूअल प्रीमियम आपके खाते से डेबिट होता है
1: जी।
0: तो उसको आप सफिशियंट अपना मई महीने में बचत रखें जिससे कि आपके खाते से उसका प्रीमियम डेबिट हो सके
1: जी।
0: इसमें 2 लाख का कवर है जो एक्सीडेंटल केस में है और इसका क्लेमेंट बड़ा ही सिंपल है। इसको आप जैसे ही किसी की मृत्यु होती है उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा के और उसके कारण के साथ कि किस कारण से मृत्यु हुई है आप उस बैंक में दे दें तो वो सब इंश्योरेंस कंपनी को भेज देते हैं और वहां से क्लेम नॉमिनी को मिल जाता है। इसमें एक चीज जो हमने नोटिस की है वो हम कहना चाहेंगे कि जब भी इस कंपनी में, इस इंश्योरेंस स्कीम में जब भी कोई व्यक्ति नॉमिनी करे तो ध्यान रखे कि अपनी नॉमिनी का नाम ध्यान से उसमें भरे
1: जी।
0: क्योंकि कई बार देखा गया है कि जब नॉमिनी का नाम होता है तो पहले कई बार गलत भर दिया जाता है जिसको सुधारने में फिर काफी समय लगता है।
1: सो
0: इसका ध्यान रखना है कि जब इंश्योरेंस पॉलिसी ले तो जो भी आपकी नॉमिनी है उसका नाम ठीक से भरा जाए
1: जी। ये आपने पूरी प्रक्रिया हमें समझाई और बहुत ही सरल तरीके से आपने समझाई है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोता जो अब विचार कर रहे होंगे ये बीमा लेने के लिए, उन्हें पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। और जो हमारे हेल्प करते हैं रोजमर्रा के जीवन में, हमारे घर में जो काम के लिए आते हैं, चाहे हमारे ड्राइवर भैया हैं, मालिक काका हैं, तो हम ऐसे लोगों को भी बताएं इसके बारे में क्योंकि उनके लिए बेहद उपयोगी ये होगा। और जो जानकारी है उससे हमें पता चलता है कि बहुत ही सरल तरीके से ये बीमा लिया जा सकता है। अशोक चंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगी सर, अक्सर लोग ये कहते हैं कि कोई भी पॉलिसी जब हम लेते हैं तब उसमें शुरुआत में तो बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और बड़े अच्छे से समझा दिया जाता है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है उस पैसे की, तो एक तो अगर वो दुर्घटना बीमा है या मृत्यु बीमा भी है तो होता यह है कि एक तो परिवार वैसे ही दुखी है, परेशान है, मनोबल उनका बहुत कम है और उसमें हिडन क्लॉजेस भी सामने आते हैं, निजी क्षेत्र में अक्सर ऐसा देखा जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या इस तरह का कोई लूप होल, क्या कमी इस पॉलिसी में भी है, इन योजनाओं से जुड़ी है?
2: नहीं, इनफैक्ट इस स्कीम की यही ब्यूटी है
1: जी
2: कि जितना ये सरल है इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए, उतना ही सरल है इसके कोई भी क्लेम अगर आते हैं तो उसके निपटारा के लिए भी
1: जी।
2: और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो भी दोनों स्कीम के अंतर्गत जो इंश्योरेंस ली जाती है, चूंकि ये बैंक के माध्यम से होता है, जैसा कि हमारे सारे पैनलिस्ट ने बताया आपको कि खाता होना आपका जरूरी है, बैंक में खाता होना चाहिए और बैंक के खाते में ही इसका प्रीमियम जो है वो डेबिट होता है। और बैंक एक मीडियम है जो ये फैसिलिटी आपको इंश्योरेंस की प्रोवाइड करता है, तो इसमें किसी भी तरीके के जो क्लेम होते हैं तो हमारे बैंक के जो साथी हैं वो उसकी पूरी प्रोसेसिंग करते हैं और प्रोसेसिंग करके और रेस्पेक्टिव इंश्योरेंस कंपनीज में उसको दाखिल करते हैं और बैंक पूरा सहयोग करता है इसमें, इसको निपटारा करने के लिए। और जैसा कि अभी चर्चा में आया कि क्लेम सेटलमेंट अगर देखा जाए तो 99% क्लेम सेटलमेंट रेशियो है इसमें
1: जी,
2: प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना में, और करीब 97% क्लेम सेटलमेंट रेशियो है प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना में। तो इसमें किसी भी तरीके की शंका और कठिनाई आप नहीं समझें कि इंश्योरेंस तो मिल गया लेकिन आगे क्लेम सेटलमेंट कैसे होगा, बहुत ही सरल है और ये प्रायोरिटी में आता है हमारा, चूंकि ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक पार्ट है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का ये पार्ट है, तो बैंकों का भी दायित्व तो बनता है इसमें और इंश्योरेंस कंपनीज का भी दायित्व तो बनता है
1: जी
2: कि इसको कैसे जल्दी से इस तरीके के कोई सेटलमेंट क्लेम आए हैं तो उसको निपटारा किया जाए
1: जी। तो यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कुलभूषण शर्मा जी, आमतौर पर ऐसा होता है कि हम जब भी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो बेहद सरल लगता है कोई भी भुगतान करना, या अब पेमेंट हमें जब आती है तो बहुत खुशी होती है, लेकिन साथ ही एक साइबर फ्रॉड जो है, साइबर क्राइम्स जो हैं, उसका जोखिम भी बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में जब ये बीमा योजना जो है पूरी तरह से बैंकिंग प्रणाली पर ही निर्भर है, तो आपको क्या लगता है कितना सुरक्षित ये पूरा कार्य है और छोटी छोटी बचत जो लोग अपनी जोड़कर देंगे और मुसीबत के लिए उस समय के लिए वो अपना धन संचय करते हैं कि जरूरत के समय हमें काम आए, क्या इसमें इस तरह का कोई डर जुड़ा है साइबर फ्रॉड का?

0: बैंकिंग और बीमा क्षेत्र में फ्रॉड होने की संभावना, इससे इनकार नहीं किया जा सकता
1: जी।
0: पीएमजेजेवाई या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में भी इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जो इससे जुड़ी संस्थाएं हैं उनके ढांचे में ये पूर्ण व्यवस्था की गई है कि ऐसे फ्रॉड को रोका जा सके और फ्रॉड ना हो। दोनों के सहयोग से अगर ग्राहक छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता है
1: जी,
0: तो फ्रॉड की संभावना नगण्य अथवा शून्य हो जाती है। मेरे विचार में इस क्षेत्र में अगर हम दोनों योजनाओं की बात करें, हमारा जो ग्राहक है
1: जी,
0: वो बहुत अधिक इंटरनेट अथवा मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा है और भुगतान की विधि हमने नेफ्ट के द्वारा रखी है
1: जी,
0: तो हमारी साझी जिम्मेवारी बनती है बीमाकर्ता की और बैंक की कि नेफ्ट का जो सही आंकड़े हैं उनकी प्रविष्टि की जाए।

0: कि नेफ्ट का जो सही आंकड़े हैं उनकी प्रविष्टि की जाए, उनको भली प्रकार जांच लिया जाए, और क्योंकि ये पैसा सीधा जो बेनिफिशियरी है उसके खाते में जाने वाला है, फ्रॉड को रोका जा सकता है। मेरे विचार में यहाँ उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ग्राहक को हम दोनों कंपनीज पे भरोसा करना चाहिए, जिस बीमा कंपनी से उन्होंने बीमा लिया है या जिस बैंक से उन्होंने अपना खाता रखा है, दोनों ही सुदृढ़ हैं, इस मामले में जागरूक हैं, ग्राहक उन्मुखी हैं कि ऐसी घटनाएं ना हो।
1: जी, और क्योंकि इसमें ऐसी कोई प्राइवेट कंपनी शामिल नहीं है कि वो बहुत ही लालच कुछ दे कि हम बहुत कम समय में आपको ये प्रोविडेंट देंगे, ये लाभ देंगे, तो वो जोखिम भी कम हो जाता है, इसमें भरोसा बनाए रखा जा सकता है। अशोक जी, आपसे जानना चाहूंगी, ग्रामीण क्षेत्रों में हम कई बार इस तरह की घटनाओं के बारे में सुनते हैं कि किसी को सांप ने काट लिया, उसकी वजह से मृत्यु हो गई, या बिजली गिरी है कहीं पर, या किसी घर का निर्माण हो रहा था, छत ढह गई है, बारिश या भूकंप में इस तरह की दुर्घटना हुई। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस दौरान, जबकि डॉक्यूमेंट्स भी पूरे नहीं हैं और घर का माहौल भी जो है वो बहुत ही दयनीय स्थिति में है, तो कैसे मदद होती है इन योजनाओं के माध्यम से?
2: धन्यवाद नीलम जी, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। आज के जमाने में ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं रहता कि जब इस तरह की दुर्घटना उनके साथ हो जाए तो वो किस तरह इसके साथ डील करें। तो पहला तो ये कि दुर्घटना में अगर मृत्यु होती है, किसी भी कारण से होती है, तो जीवन ज्योति बीमा योजना में कवर मिलता है। तो उसके लिए सिर्फ हमें मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, जो व्यक्ति है जिसका बीमा किया गया है उसके मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, तो वो बनवाने के लिए तुरंत उसका प्रयास करना चाहिए।
1: जी।
2: दूसरा जो सवाल आपका था कि जो सुरक्षा बीमा योजना है, क्योंकि एक्सीडेंटल स्कीम है, इसमें 2 लाख का बीमा कवर है, उसमें एक्सीडेंट से, तो जैसे सर्पदंश से अगर किसी की मृत्यु हो गई है, तो इसमें मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसमें ये डॉक्टर कन्फर्म करेगा कि हाँ इस वजह से इसकी मृत्यु हुई है, हमारे जो खाता धारक है उसकी, वो उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट करेगा। तो ये जो 2 रिपोर्ट होंगी, इसको जैसे ही बैंक में सबमिट करेंगे तो बैंक इसको फर्दर प्रोसेस करने के लिए उसको पोर्टल पर डाल देगी।
1: जी,
2: ऐसे ही जो आपने बोला कि आकाशीय बिजली गिरने से अगर होती है, तो वो भी इसमें कवर है, दुर्घटना बीमा योजना में दोनों कवर है, तो इसमें हो जाएगा। अगर मकान गिरने से हुआ है तो वो भी इसमें कवर है। तो कोई भी दुर्घटना होती है और उसके कारण अगर मृत्यु होती है, तो इसमें दोनों तरह का बीमा मिलेगा।
1: जी,
2: सुरक्षा बीमा योजना भी 2 लाख का मिलेगा और जीवन बीमा योजना भी 2 लाख का मिलेगा। तो अगर दुर्घटना से किसी व्यक्ति की मृत्यु सांप के दसने से, बिजली, आकाशीय बिजली गिरने से, या उसका मकान ढहने से हुई है, तो उस केस में उस व्यक्ति को 2+2 4 लाख रुपए का क्लेम बैंक से और जो इंश्योरेंस कंपनी है उससे पास हो जाए।
1: जी, और कितनी समय सीमा के भीतर ये मिलता है, या कितने दिन का समय उसे दिया जाता है ताकि परिजन स्वयं को संभाल सकें, क्योंकि कुछ समय उन्हें अपने लिए भी चाहिए होता है, तुरंत वो क्लेम के लिए नहीं आ सकते, तो कितना समय उनके पास होता है?
2: सो इसमें देखिए, 1 महीने का समय मिलता है कि हम कम से कम 1 माह में उसको जितनी जल्दी सहायता करें उतना अच्छा होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि अगर वो 1 माह या 2 माह या 3 माह में नहीं कर पाए तो क्लेम उसको नहीं मिलेगा।
1: जी,
2: जब उसको पता चले उसके डोमिनी को कि हमारा इंश्योरेंस था पति का, उसके खाते से पैसे कटे हैं, तो जैसे ही उसको पता चले वो इन कागजों के साथ बैंक में संपर्क करें। दूसरा क्या है, इसमें हम लोग भी मदद करते हैं कि हमारा काफी नेटवर्क है, आप जो है, तो वो भी इसमें कवर है। तो कोई भी दुर्घटना होती है और उसके कारण अगर मृत्यु होती है, तो इसमें दोनों तरह का बीमा मिलेगा।
1: जी,
2: सुरक्षा बीमा योजना भी 2 लाख का मिलेगा और जीवन बीमा योजना भी 2 लाख का मिलेगा। तो अगर दुर्घटना से किसी व्यक्ति की मृत्यु सांप के दसने से, बिजली, आकाशीय बिजली गिरने से, या उसका मकान ढहने से हुई है, तो उस केस में उस व्यक्ति को 2+2 4 लाख रुपए का क्लेम बैंक से और जो इंश्योरेंस कंपनी है उससे पास हो जाए।
1: जी, और कितनी समय सीमा के भीतर ये मिलता है, या कितने दिन का समय उसे दिया जाता है ताकि परिजन स्वयं को संभाल सकें, क्योंकि कुछ समय उन्हें अपने लिए भी चाहिए होता है, तुरंत वो क्लेम के लिए नहीं आ सकते, तो कितना समय उनके पास होता है?
2: सो इसमें देखिए, 1 महीने का समय मिलता है कि हम कम से कम 1 माह में उसको जितनी जल्दी सहायता करें उतना अच्छा होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि अगर वो 1 माह या 2 माह या 3 माह में नहीं कर पाए तो क्लेम उसको नहीं मिलेगा। जब उसको पता चले उसके डोमिनी को कि हमारा इंश्योरेंस था पति का, उसके खाते से पैसे कटे हैं, तो जैसे ही उसको पता चले वो इन कागजों के साथ बैंक में संपर्क करें। दूसरा क्या है, इसमें हम लोग भी मदद करते हैं कि हमारा काफी नेटवर्क है, आप

0: भी ले रही हैं, ऐसे में जो महिलाएं बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं और कभी कभी वो अपने घर पर भी नहीं बताना चाहती हैं अपनी बचत के बारे में, कई बार इस तरह की परिस्थितियां होती हैं, तो क्या इसमें किसी विटनेस की भी जरूरत होती है जब वो बीमा लेती हैं, किसी के सिग्नेचर चाहिए होते हैं साथ में, या ग्रुप इंश्योरेंस का भी कुछ इसमें हो सकता है?
1: नहीं, इसमें कोई विटनेस की आवश्यकता नहीं है। ये सेल्फ इंड्यूस्ड फॉर्म होता है और उसमें खुद वो अपना डिटेल्स भरे जाते हैं इसमें, और बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है जैसा कि अभी बताया गया आप
0: जी।
1: और सेल्फ हेल्प ग्रुप में तो बहुत ही अच्छा है, जितनी महिलाएं उसके भीतर ग्रुप के भीतर काम कर रही हैं, आई थिंक सारी महिलाएं इस दोनों स्कीम्स का लाभ उठा सकती हैं। और आज के डेट में अगर हम देखें तो पूरे इंडिया में सेल्फ हेल्प ग्रुप एक बहुत बड़ी क्रांति के रूप में हम देखते हैं इसको
0: जी।
1: और उसमें अगर इसको सुरक्षा के मद्देनजर भी अगर ये लाभ भी उनको प्रोवाइड की जाए बैंकों के माध्यम से या अवेयरनेस कैंपेन के माध्यम से उनको इसमें भी जोड़ दिया जाए तो एक बहुत बड़ी क्रांति देश के भीतर हो सकती है। देखिए आज जो भारत के भीतर स्थिति है, आई थिंक 4-5% इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंडिया में है, और जब हम विकसित भारत 2047 की कल्पना कर रहे हैं और उसके भीतर हम काफी काम कर रहे हैं तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन भी गांव-गांव तक होना चाहिए। और उसमें ये जो प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसके माध्यम से हम जो लोगों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं उनको अवेयर करने का प्रयास करते हैं कि इंश्योरेंस क्यों जरूरी है
0: जी।
1: ये दो स्कीम्स का तो लाभ उनको मिलता ही है लेकिन इसके माध्यम से उनको ये भी जानकारी मिलती है कि हमें आगे और भी किसी तरीके के इंश्योरेंस कुछ लेने की जरूरत है, आवश्यकता है, तो एक बहुत बड़ा रोल विकास के दर में काम करता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये।
0: और कंपनियां जो हैं जो कि कुछ इम्प्लॉयज के साथ में काम कर रही हैं वो हायर करते हैं टैलेंट को, क्या कंपनी अपनी तरफ से उनका इंश्योरेंस करवा सकती है या ये इंडिविजुअल लेवल पर?
1: नहीं, ये होता तो इंडिविजुअल लेवल पे ही होता है, उसके बैंक के खाते से ही होता है
0: जी।
1: और अभी तो जीवन सुरक्षा पोर्टल डेवलप हो गई है जिससे किसी भी तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन नहीं हो, मिस सेलिंग नहीं हो, कस्टमर के कंसेंट लेने के बाद ही इसको दोनों पॉलिसीज को लोगों को मुहैया कराई जाए। और उसके लिए अभी जीवन सुरक्षा पोर्टल में आप लोग अप्लाई करते हैं और उसमें बैंक के जो साथी हैं उसमें मदद करते हैं और उसके बाद उनके कंसेंट के बाद ही ये पॉलिसी ली जाती है। लेकिन जरूर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉइज को मदद करना चाहता है तो वो जो प्रीमियम पे कर रहा है उतनी प्रीमियम राशि वो रीइंबर्स कर सकता है उनको, और आई थिंक बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ये काम भी कर रहे हैं, उनको ये इसका लाभ प्रोवाइड करने के लिए पूरी जो प्रीमियम है वो रीइंबर्स कर देते हैं, उनके खाते में वो क्रेडिट कर देते हैं, ये किया जा सकता है इसमें
0: जी, ये किया जा सकता है जी। कुलभूषण शर्मा जी, आपसे जानना चाहूंगी जीवन बीमा निगम के बारे में, तो भारत में बहुत सारे लोग जानते हैं, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी ये जो ध्येय वाक्य है ये लोगों को रटा हुआ है। ऐसे में जब हमारे बैंक्स भी अब बीमा प्रणाली से जुड़ रहे हैं तो कई बार भारत में क्योंकि इतना विशाल देश है और भौगोलिक विशेषताएं हमारी हैं लेकिन विविधताएं भी हैं उसमें, कई जगह स्थानीय बैंक भी होते हैं जो कि सरकारी बैंक नहीं है, निजी क्षेत्र पर कार्य कर रहे हैं और वो एक छोटे से एरिया को कवर करते हैं, क्या वो इस तरह का बीमा जो है वो करवा सकते हैं या ये योजना वो उपलब्ध करवा सकते हैं, एंटाइटल हैं वो?
2: नीलम जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, क्योंकि आमतौर पर धारणा ये है कि निजी बैंक या जो कोऑपरेटिव बैंक हैं शायद अच्छा काम नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में जितने भी बैंक हैं वो आरबीआई के द्वारा नियंत्रित हैं, वो नियामक है, उनके द्वारा ही उनको लाइसेंसिंग किया जाता है, तो यहाँ ये कहना उचित नहीं होगा कि छोटे बैंक या निजी बैंक उस परिधि में नहीं आते हैं। मैं उत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का जो सेंट्रलाइज हब है उसका प्रभारी हूँ
0: जी।
2: मेरे पास इस समय लगभग 130 छोटे बड़े बैंक्स हैं जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का हमारे साथ एमओयू साइन करके कार्य कर रहे हैं, उनका कार्य भी बहुत अच्छी प्रकार से चल रहा है। और अखिल भारतीय स्तर पे पंजाब नेशनल बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक, ये हमारे उत्तर क्षेत्र एलआईसी से जुड़े हुए हैं जिनका पूरे भारत का कार्य करने का तरीका हम देख रहे हैं
0: जी।
2: कहीं भी हमारी नजर में ऐसा कुछ नहीं आया है कि किसी निजी बैंक ने या किसी सरकारी क्षेत्र के बैंक ने इसमें कुछ त्रुटिपूर्ण कार्य किया हो, तो लोगों को पूरा भरोसा होना चाहिए। हमारी जो भी राजकीय व्यवस्थाएं हैं वो बहुत बहुत सक्षम है और जितने भी नियामक हैं वो अपना कार्य भली प्रकार कर रहे हैं, और ये तो योजना ही सरकार की है और इसमें वित्तीय सेवाएं विभाग हमारे मॉनिटर के रूप में काम करता है, समय समय पर इसकी समीक्षाएं की जाती हैं, जो भी आंकड़े हैं उस पे अनुसंधान किया जाता है
0: जी।
2: अगर कुछ ऐसा होता तो आज तक पकड़ में आया होता, तो मुझे लगता है कि हम भरोसा दिला सकते हैं देश की जनता को कि ये जो भी प्रणाली है एकदम बढ़िया कार्य कर रही है और वो चिंता मुक्त होके हमसे जुड़ सकते हैं, कोई भी बैंक हो, कोई

0: भी इंश्योरेंस कंपनी हो, सबको जो लाइसेंस दिया गया है वो एक प्रक्रिया के अंतर्गत दिया गया है और उस प्रक्रिया के अंतर्गत उनका उत्तरदायित्व भी बनता है। यहाँ मैं एक नामांकन के बारे में थोड़ा सा स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। नामांकन क्योंकि आवश्यक है तो हम चिंता मुक्त हो जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है दुर्भाग्यवश जिस व्यक्ति को नामांकित किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उस स्थिति में मेरा अनुरोध रहेगा कि जो भी इसका बीमा धारक है वो अपना नामांकन परिवर्तन करा ले, क्योंकि अगर नामांकन नहीं है वैध रूप से तो मृत्यु की दशा में पैसा किसको दे, ये बैंक के लिए एक संकट की स्थिति उत्पन्न करता है और उसके लिए जो नियम है वो बहुत बहुत सख्त है। या तो एक सस्पेंशन सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है जो न्यायालय से मिलता है और उसमें बहुत समय लगता है, या बैंकिंग प्रणाली में एक और है सर्टिफिकेट ऑफ लीगल हीयर्स, उनके जो भी वारिसों का एक प्रमाण पत्र बनाया जाता है उसको बनाना पड़ता है
1: जी।
0: तो अंग्रेजी में कहते हैं स्टिच ऑन टाइम इज बेटर। तो अगर हम पहले से ही ध्यान रखें, वैध नॉमिनेशन रखें, वैलिड नॉमिनेशन रखें और नॉमिनी की अगर मृत्यु हो जाती है तो तुरंत नया नॉमिनी निर्धारित कर दें, तो ये भुगतान देने में दोनों संस्थाओं को भी आसानी होगी और जो पात्र व्यक्ति है उसको लाभ भी समय अनुसार मिल पाएगा, क्योंकि मृत्यु दावा का भुगतान समय अनुसार होना बहुत आवश्यक है
1: जी। और जो नॉमिनी है उसकी उम्र कुछ भी हो सकती है, वो नाबालिग भी हो सकती है।
0: अगर नाबालिग है, मान लीजिए किसी परिवार में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि वालिग नॉमिनी नहीं है, तो उसके लिए एक अपॉइंटी को नियुक्त किया जाता है जो उसके साथ मिलके प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है
1: जी। अभी कुछ समय पहले आपने डेटा बताया कि पूरे देश में इसका लाभ उठा रहे हैं लोग, बेहद जागरूक हैं और ग्रामीण क्षेत्र में भी लोग बढ़ चढ़कर बीमा योजना में हिस्सा ले रहे हैं। तो मैं ह्यूबर्ट सर आपसे जानना चाहूंगी, नॉर्थ ईस्ट का किस तरह का एक्सपीरियंस है? वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग?
2: थैंक यू मैडम फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी। सी, इंडियाज विजन बिकमिंग अ डेवलप्ड नेशन डिपेंड्स ऑन एम्पावरिंग एवरी सिटीजन
1: जी,
2: इकोनॉमिकली फाइनेंशियली एम्पावरमेंट। अ डेवलप्ड नेशन इज ओनली पॉसिबल व्हेन ईच एंड एवरी सिटीजन इज फाइनेंशियली स्ट्रांग, फाइनेंशियली एम्पावर्ड। वी एज अ बैंकर, as an insurance company, as a post office, we are working on it so that each and every nook and corner of India, the financial accessibility is there. We are working on it so that each and every individual, whether you are in the rural area, extreme corner of in the northeast, extreme corner in the southwest, that financial accessibility should be there. We are working on it. That is one of the prime goal of our this one, that is financial inclusion. We want each and every individual citizen of India should be financially inclusion, financially strong, economically strong, so that India becomes a developed nation. We specifically in Northeast, yes, there are difficult terrain, there are difficult road condition, where financial accessibility is very difficult, where we cannot reach to the villages, which is far away where there is no proper accessibility. But still then, we try our best as a financial sector, as an insurance company, post office, we ensure that the financial services, banking services, insurance services is reached to the corner by way of opening customer service points, by way of giving these mitras from time to time. Post offices, postmen are reaching there. So not only in Northeast, in other parts, there are also difficult centers. But still then, we are doing our best so that India, everyone is economically strong, everyone is, the financial services is reached to each and every citizen of India. This is like as a banker, as a financial services, we are working on it.
1: जी, thank you so much for sharing it. और जैसा कि प्रधानमंत्री जी कहते भी हैं, जिसे पहले भारत का आखिरी गांव कहा जाता था वो भारत का पहला गांव है माणा। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हाशिए पर खड़े अंतिम व्यक्ति तक हम जन सेवा जो है वो पहुंचाना चाहते हैं, सुविधाएं पहुंचाना चाहते हैं, यही ध्येय है। तो ये जो योजनाएं शुरू की गई हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इनका लाभ इसी प्रकार से मिलता रहे सभी को। हम आम तौर पर जब दुर्घटना की बात करते हैं, मृत्यु की बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि जब हम बीमा ले रहे हैं यानी हम किसी परिजन की मृत्यु की कामना कर रहे हैं, लेकिन ये भावना नहीं है। ये योजनाएं जो हैं हमें ये बताती हैं कि जब बहुत कठिन समय है, जब चाहकर भी हमारे अपने परिजन कुछ नहीं कर पाते हैं किसी दुख की घड़ी में, जब दुर्घटना के समय शारीरिक दुख वो साझा नहीं कर सकते किसी का, और अचानक जब किसी परिजन की मृत्यु हो जाती है तो उसे टाला नहीं जा सकता, उस समय के लिए मानसिक रूप से हम खुद को तैयार करें, लेकिन आर्थिक रूप से हमें सक्षम बनाए रखने के लिए ये योजनाएं इंट्रोड्यूस की गई हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारे बैंक और हमारा बीमा क्षेत्र इस तरह से काम कर रहा है कि देश के कोने कोने तक इनका लाभ पहुंचे, और यही उद्देश्य

0: आकाशवाणी का हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से इस बारे में जागरूकता फैले और लोगों को पता चले कि वो स्वयं भी इसका लाभ ले सकते हैं और हमारे जो हाउस हेल्प हैं, हमसे जुड़े हुए ऐसे लोग जो असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, निम्न आय वर्ग से हैं, कम पढ़े लिखे हैं, उनको भी हम समझाएं कि किस तरह से इसका लाभ लिया जा सकता है, क्योंकि कोरोना ने भी हमें सिखाया है कि कब एक छोटी सी मदद बहुत बड़ी हो सकती है और कब बहुत बड़ी बड़ी चीजें भी मिलकर हमें वो संबल नहीं दे पाती जो कोई एक व्यक्ति एक सही समय पर आकर हमें देता है। तो यही उद्देश्य हमारे इस कार्यक्रम का भी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम से आपको इन योजनाओं के बारे में और बीमा क्षेत्र के बारे में काफी कुछ जानने समझने को मिला होगा। मैं आकाशवाणी परिवार की ओर से सबसे पहले तो अपने विशेषज्ञों का यहाँ पर धन्यवाद करूंगी। इस कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञ रहे हमारे साथ श्री अशोक चंद्र, आप प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंजाब नेशनल बैंक से। हमारे साथ थे श्री कुलभूषण शर्मा, आप जीवन बीमा निगम क्षेत्र से रीजनल मैनेजर आप हैं। श्री ह्यूबर्ट, डिप्टी जनरल मैनेजर उप महाप्रबंधक आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। और श्री अशोक कुमार, आप सहायक महाप्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। श्री अशोक चंद्र जी, आप हमारे स्टूडियो आए, आपने इतनी आवश्यक बातें हमें बताई, हमें जरूरी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: श्री कुलभूषण शर्मा जी, आपने जीवन बीमा निगम के बारे में भी बताया, लेकिन आपने ये भी बताया कि कैसे परस्पर भरोसा जो है वो रखा जाना चाहिए इस पूरी प्रणाली में, और छोटी छोटी चीजें जो हम बीमा योजना लेते समय पूरा करें, उस कागज को कैसे हमें भरना है, वो कैसे हमारे लिए जरूरी है, ये आपने हमें समझाया, जैसे नॉमिनी के बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए।
2: बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी।
0: अशोक कुमार जी, आपने बहुत अच्छे से सारा डेटा हमारे सामने रखा और हमें बताया कि किस प्रकार से इनका लाभ लिया जा सकता है, क्या पूरी प्रक्रिया है, कैसे इनरोल करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ह्यूबर्ट सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमें ज्वाइन करने के लिए।
3: धन्यवाद।
0: मैं नीलम मलकानिया पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से अब आपसे अनुमति लेती हूँ। आज का हमारा कार्यक्रम दुर्घटना बीमा, छोटा कदम बड़ा बदलाव, कार्यक्रम प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ और कार्यक्रम संयोजक प्रमोद कुमार वत्स के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत ने कहा है कि हुर्मुज जल डमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों से मुक्त और बिना रुकावट नौवहन को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है, ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। अमरीकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जलडमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमरीकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान ने जॉर्डन में एक अमरीकी सैन्य अड्डे पर भी हवाई हमला करने का दावा किया। इस तनाव ने क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन्ह शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन्ह शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। देश भर में पौधे लगाने के लिए व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने कल एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया।

0: इस अभियान के तहत उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से अधिक पौधे लगाए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी पर तापमान बढ़ने से चिंतित है।
1: जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा जलवायु संकट गहराएगा और ये नुकसान 2100 तक बढ़कर जीडीपी में जो कमी हो रही 20% तक पहुंच सकता है। आप कल्पना कीजिए क्या होगा। ये आर्थिक संकट इतना बड़ा होगा कि इसको मुकाबला करना फिर कठिन हो जाएगा। और इसलिए वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग मेघालय सरकार के सहयोग से शिलांग में नेक्स्ट जनरेशन प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधार विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन आज से कर रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। भारत ने चीन के ओर्डोस में खेली जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ सम्पन्न किया। लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को एकमात्र टेस्ट में 457 रन का लक्ष्य दिया है। तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड ने 6 विकेट पर 130 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन बनाकर घोषित कर दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhineet Shukla. New Delhi has reiterated its call for immediate de-escalation of tensions in West Asia region after attack on a commercial ship GFS Galaxy carrying Indian crew members off the coast of Oman yesterday. Condemning the attack, the External Affairs Ministry said that out of 11 Indian nationals on board, 10 have been rescued so far, while one is reportedly missing. The ministry said the Indian embassy in Oman is closely monitoring the situation and proactively coordinating with the Omani authorities in the ongoing search and rescue operation. New Delhi also expressed concern over the continuing incidents of attacks on commercial shipping in the region. It also reiterated the call for conclusion of ongoing negotiations for a diplomatic solution so that peace and stability can return to the region. The mortal remains of the 15 Indian tourists who lost their lives in Saturday's boat capsize incident near Phu Quoc Island in Vietnam were taken to Ho Chi Minh City. The Indian embassy in Vietnam informed that the mortal remains will be transported to India at the earliest after the completion of necessary formalities in Ho Chi Minh City. It added that the embassy and the consulate general are closely monitoring with the Vietnamese authorities and assured all the possible assistance to facilitate the early transportation of the mortal remains to India. Uttar Pradesh created a new benchmark in environment conservation by planting 35 crore 27 lakh saplings in a single day under the Ek Ped Maa Ke Naam campaign yesterday. This is 27 lakh 89,000 more than the government's target of 35 crore. Chief Minister Yogi Adityanath launched the statewide Vriksharopan Mahayagya Drive from Gorakhpur by planting the sacred Triveni saplings. Home Minister Amit Shah also launched a massive tree plantation drive in Gandhinagar, Gujarat, which saw the planting of over 1.25 crore saplings across his Lok Sabha constituency. Addressing the Vriksh Mitra program and Paryavaran Sanrakshan Sankalp event in New Delhi, Union Minister Shivraj Singh Chauhan emphasized that planting trees is extremely important for protecting the environment and ensuring a sustainable future.
1: जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा
3: As temperatures continue to rise, the climate crisis will only deepen. Estimates suggest that if the current trend continues, climate change could reduce global GDP by as much as 20% by the end of this century. The resulting economic crisis could be so severe that recovering from it would become extremely difficult. Therefore, if greenhouse gas emissions continue at their current pace by the year 2050, the earth will face serious environmental, economic and social challenges.
1: चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
2: Former Qatar Emir Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 1:11 और 9 सेकंड। गीत सुहानी प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा जी की आवाज़ के साथ।

फिल्म बहू बेगम से सुन रहे थे आप ये सदाबहार गीत। आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी और आशा जी की। ये फिल्म 1967 में प्रदर्शित हुई थी और इस फिल्म का निर्देशन किया था एम सादिक ने। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी प्रदीप कुमार, मीना कुमारी और अशोक कुमार ने। फिल्म का संगीत रोशन का था और गीत साहिर साहब ने लिखे थे। ये फिल्म रफ़ी साहब और आशा जी की आवाज़ में गाया हुआ गीत जो अभी हमने आपको सुनवाया, हम इंतज़ार करेंगे, के लिए भी जानी जाती है। और इस फिल्म का संगीत दर्शकों द्वारा काफ़ी पसंद किया गया। और अब अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं। अगला गीत है लता मंगेशकर की आवाज़ में।

फिल्म पारसमणी से लता मंगेशकर की आवाज़ में सुना आपने ये गीत। संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और गीतकार थे असद भोपाली। ये फिल्म आई थी 1963 में और इस ये एक संगीतमय फिल्म थी और इस फिल्म का निर्देशन किया था बाबू भाई मिस्त्री ने और ये फिल्म आर्थिक रूप से सफल रही थी और ये फिल्म संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की पहली आधिकारिक रिलीज़ फिल्म थी और इस फिल्म को तमिल भाषा में मायामणि शीर्षक से 1964 में रिलीज़ किया गया था। अगला गीत आप तक पहुंच रहा है महेंद्र कपूर की आवाज़ में, फिल्म बहारें फिर भी आएंगी।

फिल्म का नाम बहारें फिर भी आएंगी, आवाज़ महेंद्र कपूर की, संगीत ओपी नैयर साहब का और गीतकार शिवन रिजवी साहब। ये फिल्म आई थी 1966 में और इस फिल्म को निर्मित किया था गुरुदत्त साहब ने, निर्देशित किया था शहीद लतीफ ने और इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे माला सिन्हा, धर्मेंद्र, तनुजा और रहमान। इस फिल्म का संगीत ओपी नैयर साहब ने दिया था। और अब बढ़ते हैं हम अगले गीत की तरफ, अगला गीत शमशाद बेगम की आवाज़ में।

14.1 MHz पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूँ आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 1:37 और 25 सेकेंड और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने। अगला गीत आशा जी और शमशाद बेगम की आवाज़ में।

नया दौर से सुन रहे थे आप ये सदाबहार गीत शमशाद बेगम और आशा जी की आवाज में, दिलीप कुमार और वैजंती माला के अभिनय से सजी हुई ये फिल्म आई थी 1957 में और जिसे बनाया था पीआर चोपड़ा साहब ने, और इस फिल्म का संगीत आज भी दर्शकों द्वारा काफ़ी सराहा जाता है और बहुत ही चाव के साथ सुना भी जाता है। ये अपने ज़माने की बहुत सफल फिल्म रही थी और ये उस ज़माने की एक क्रांतिकारी फिल्म भी मानी जाती है, और मशीन बना मनुष्य को लेकर बहुत ही संवेदनशील ढंग से इस फिल्म को बनाया गया था, और ओपिन अय्यर साहब का पंजाबी पृष्ठभूमि पर आधारित संगीत इस फिल्म को और ज़्यादा लोकप्रिय बनाता है और ज़्यादा ख़ास बनाता है। अगला गीत आप तक पहुंच रहा है लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म असली नकली से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट नौवहन को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है, ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों के बाद अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। अमेरिकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जलडमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमेरिकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान ने जॉर्डन में एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर भी हमला करने का दावा किया। इस तनाव ने क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। सहकारिता और गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फॉरेंसिक विशेषज्ञ समूह की बैठक और राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में पहली अंतर्राष्ट्रीय जांचकर्ता अपराध प्रतिस्पर्धा का उद्घाटन करेंगे। श्री शाह कृषि उपज बाजार समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नई सब्जी उप यार्ड का उद्घाटन भी करेंगे। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने कल अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से अधिक पौधे लगाए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है। मध्य प्रदेश की

नक्स की तरह उभरना तुम्ही से सीखा, नक्स की तरह उभरना भी तुम्ही से सीखा, रफ्तार रफ्तार नजर आना भी तुम्ही से सीखा। तुमसे हासिल हुआ एक गहरे समंदर का सुकून, और हर मौज से लड़ना भी तुम्ही से सीखा। अच्छे शेरों की परख तुमने ही सिखलाई मुझे, अपने अंदाज से कहना भी तुम्ही से सीखा। छोटी सी बात पे खुश होना मुझे आता था, छोटी सी बात पे खुश होना मुझे आता था, पर बड़ी सी बात पे चुप रहना तुम्ही से सीखा। नक्श की तरह उभरना भी तुम्ही से सीखा, रफ्ता रफ्ता नजर आना भी तुम्ही से सीखा। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 2:12:35। शुरू हो चुका है प्रोग्राम रात सुरमई। प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बहुत ही खूबसूरत और सदाबहार गीत के साथ। आवाज़ है तलत अजीज़ की।

वैसे ये बात तो सच है कि जब भी आपसे बातें होती हैं, जब भी आपसे मुलाकात होती है, तो ये ज़मीन चांद से बेहतर नज़र तो आती है, क्योंकि आप और हम जुड़ते हैं दिल से दिल तक। कितनी अजीब बात होती है ना कि हम अक्सर खुशियों को आसमान में, चांद सितारों में ढूंढते हैं, लेकिन जब ज़िंदगी में कोई ख़ास इंसान हमारी ज़िंदगी में आता है, तो हमारी जो सूखी पड़ी हुई ज़मीन होती है खुशियों की, वो अचानक हमें जन्नत बन जाती है, हमें खुशी महसूस होने लगती है। क्या आपके पास कोई ऐसा ख़ास शख्स है जिसके साथ होने से दुनिया और खूबसूरत हो जाती है? अगर है तो फिर आपका थोड़ा इतराना तो बनता है। अगला गीत भूपेंद्र सिंह और सुरेश वाडकर की आवाज़ में, आप ही के लिए।

मोहब्बत अगर मुकम्मल हो तो फिर इतराना तो बनता है, और वैसे भी प्यार में जब कोई थोड़ा सा इतराता है तो गुस्सा नहीं आता, बल्कि दिल को और दीवाना बना देता है। अगर आज रात वो आपके पास हैं तो मुझे लगता है ये वक्त शायद यही गुनगुनाना चाहता है। अगला गीत उन्हीं के लिए।

ऐसा कहा जाता है कि जहाँ शब्द थक जाते हैं, जहाँ शब्द सीमित हो जाते हैं, वहाँ संगीत अपनी बात कहना शुरू करता है, क्योंकि संगीत अनंत है, असीमित है। मुझे जब मैं इस गाने को सुन रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी अनंत में बैठी हुई हूँ। वहाँ से खुद को वापस लेकर आना वाकई बहुत मुश्किल होता है। अगर इस गाने को सुनते हुए अगर आपने भी इसी तरह का कुछ महसूस कर रहे थे तो थोड़ी सी वॉल्यूम और बढ़ा लीजिए, क्योंकि अगला गाना भी सीधे आपके दिल तक पहुँचने वाला है।

वो रुला के हंस ना पाया देर तक, वो रुला के हंस ना पाया देर तक, जब मैं रो के मुस्कुराया देर तक। भूलना चाहा कभी उसको अगर, और भी वो याद आया देर तक। खुद ब खुद बेसाख्ता मैं हंस पड़ा, उसने इस दर्जा रुलाया देर तक। गुनगुनाता जा रहा था एक फकीर, धूप रहती है न साया देर तक। कल अंधेरी रात में मेरी तरह एक जुगनू जगमगाया देर तक। वो रुला के हंस ना पाया देर तक, जब मैं रो के मुस्कुराया देर तक। हंड्रेड पॉइंट वन मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 2:41 और 57 सेकेंड। आप सुन रहे हैं रात सुरमई, ऐसी सुरमई रात जहां हम रात के जज्बात को, रात के दर्द को एक सुर में ढालने की कोशिश करते हैं, ठीक उस बांसुरी की तरह जो जीवन में संगीत देती है, जीवन में आवाज देती है। अगली गजल आप तक पहुंच रही है जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज में।

बस यही तो दिक्कत है कि मोड़ से जिंदगी कभी शुरू नहीं होती, बल्कि वहां से तो सिर्फ रास्ते बदलते हैं। सच कहूं, आपको तो मालूम ही है मैं जैसा सोचती हूँ समझती हूँ आपसे जरूर शेयर करती हूँ। जब मैं ये गज़ल सुन रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जिंदगी में काश एक रिवाइंड बटन तो होना चाहिए था, काश एक बार तो जिंदगी जैसा कहा गया है गजलों में कहना शायद, या शब्दों में कहना बहुत आसान होता है, पर असल जिंदगी में जितना शब्दों में कह दिया उतना जिंदगी में

कर गुजरना बहुत मुश्किल होता है और शायद नामुमकिन होता है, क्योंकि आपको भी पता है जिंदगी सिर्फ पल दो पल की है, कल कोई और होगा, कल कोई और था। अगला गीत अभी के लिए।

जाहिर साहब की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि जो उन्होंने अपने वक्त उस दौर में महसूस किया, जिया, वो महसूस करना, वो जीना आज भी बेमानी नहीं लगता, आज भी वैसा ही महसूस किया जा सकता है। इस दुनिया के रंगमंच पर हम सब पल दो पल के मुसाफिर हैं। आज हम हैं, कल कोई और होगा, लेकिन इस छोटी सी जिंदगी का मज़ा भी तो यही है, जो पल हमारे पास है वही सच है, बिना इस फिक्र के कि कल क्या होगा, जो है आज ही है।

रात सुरमई में आज के लिए बस इतना ही। आज ही के दिन आपसे फिर मुलाकात होगी। 3 बजे सुनेंगे आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 3:10 पर हमरा ही प्रोग्राम लेकर आपके साथ रहेंगी अर्चना गोयल। मुझे यानी अपनी रात की हम सफर मंजू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट नौवहन को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद रखने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। अमरीकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जल डमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमरीकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान ने जॉर्डन में एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर भी हमला करने का दावा किया। इस तनाव ने क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। सहकारिता और गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फॉरेंसिक विशेषज्ञ समूह की बैठक और राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में पहली अंतर्राष्ट्रीय जांचकर्ता अपराध प्रतिस्पर्धा का उद्घाटन करेंगे। श्री शाह कृषि उपज बाजार समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नए सब्जी उपयार्ड का उद्घाटन भी करेंगे। इससे पहले गृहमंत्री ने कल अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से अधिक पौधे लगाए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी पर तापमान बढ़ने से चिंतित है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में MPTECH ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार के दृष्टिकोण को भी साझा करेंगे।

भीगी हुई फिजाओं में कुछ राज उतर आते हैं, दिल जब किसी को याद करे तो बादल भी बरस जाते हैं। मोहब्बत का मौसम भी कितना अजीब होता है, एक नाम सुनते ही चेहरे मुस्कुरा जाते हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही और मैं हूं आज आपकी हमसफर अर्चना गोयल। आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज की रात मौसम सुहावना है, ठंडी हवाओं ने मौसम को बेहद खूबसूरत बना दिया है। ऐसी रातें अक्सर दिल के बंद दरवाजों पर धीरे से दस्तक देती हैं, कुछ पुरानी यादें लौट आती हैं और कुछ अधूरे ख्वाब जाग जाते हैं और कुछ नाम बिना पुकारे ही होठों पर आ जाते हैं। कहते हैं अगर किसी की याद बारिश की पहली बूंद के साथ आए तो समझ लीजिए वो रिश्ता सिर्फ दिल का नहीं रूह का भी है।

परवीन सुल्ताना और मीनू पुरुषोत्तम की आवाज़ों में अभी आपने बहुत ही खूबसूरत सा गीत सुना। फिल्म थी दो बूंद पानी। दोस्तों, मोहब्बत सिर्फ इजहार कर देने का नाम नहीं, मोहब्बत वो सुकून है जहाँ किसी की खामोशी भी समझ आने लगे, वहाँ किसी की मुस्कान देखकर अपना दिन रोशन हो जाए और किसी की उदासी देखकर बिना कहे दुआ निकल जाए। कभी बारिश बनकर बरस जाना, कभी खुशबू बनकर बिखर जाना, अगर याद हमारी आए तो बस मुस्कुरा देना, यही हमारी मोहब्बत का खूबसूरत अफसाना होगा।

जल बिन मछली और नृत्य बिन बिजली। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। दोस्तों, दिल की किताब में एक पन्ना तुम्हारे नाम का है, हर दुआ में जिक्र सिर्फ तुम्हारे नाम का है, बारिश की हर बूंद यही कहती है ये मौसम भी किसी के इंतजार का है।

0: आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही, और हमराही के साथ मैं हूं आज आपके साथ अर्चना गोयल। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 3:25:27।
1: ये

दोस्तों जानते हो रिश्तों में सबसे खूबसूरत बात क्या होती है? अपनापन। वो अपनापन जहां बातें कम हों लेकिन एहसास बहुत गहरे हों, जहां कोई ये पूछ ले कैसे हो तो उसमें भी पूरी मोहब्बत महसूस होती है।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में ये गीत था फिल्म प्यार का मौसम से। दोस्तों, बारिश की ये बूंद हमें ये सिखाती हैं कि आसमान से गिरने वाली हर बूंद अलग होती है, लेकिन धरती पर जाकर सब एक हो जाती है। ठीक वैसे ही दो अलग दिल जब सच्चे प्यार से जुड़ते हैं तो उनकी धड़कनों की आवाज़ भी एक जैसी लगने लगती है।

आज की इस रात में जब खिड़की पर बारिश की बूंदें अपनी मधुर धुन बजा रही हैं, ठंडी हवाएं किसी पुराने गीत की तरह दिल को छू रही हैं, तो क्यों ना बातें दिल की जाए। कहते हैं मोहब्बत का मौसम कोई कैलेंडर नहीं देखता, लेकिन बरसात तो जैसे प्यार की सबसे प्यारी साथी है। कभी ये किसी की पहली मुलाकात याद दिलाती है, तो कभी किसी की मुस्कान, तो कभी किसी की याद जो आज भी दिल के बेहद करीब है।

दोस्तों, कुछ रिश्ते ही बारिश की बूंदों जैसे होते हैं। छूते तो पल भर को हैं, मगर महक उम्र भर छोड़ जाते हैं। और कुछ लोग दिल में ऐसे उतर जाते हैं कि हर मौसम उन्हीं का हो जाता है।

चलते चलते बस एक बात, न चांद की तमन्ना न सितारों की ख्वाहिश, बस इतना सा अरमान है इस दिल का कि जब भी बारिश हो तुम्हारी याद मुस्कुरा कर मेरे साथ चल पड़े।

इसी खूबसूरत गीत के साथ ही अब हमराही कार्यक्रम से मुझे यानी अर्चना गोयल को दीजिए अनुमति। नमस्कार, आपसे फिर मुलाकात होगी 4:10 पर कार्यक्रम अरुणिमा में। तब तक आइए सुनते हैं समाचार हिंदी और अंग्रेजी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट नौवहन को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जल पोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है, ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमेरिकी सेंट्रल कमान ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। अमेरिकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जल डमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमेरिकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान ने जॉर्डन में एक अमरीकी सैन्य अड्डे पर भी हमला करने का दावा किया। इस तनाव ने क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन्ह शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। सहकारिता और गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फॉरेंसिक विशेषज्ञ समूह की बैठक और राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में पहली अंतर्राष्ट्रीय जांचकर्ता अपराध प्रतिस्पर्धा का उद्घाटन करेंगे। श्री शाह कृषि उपज बाजार के अमृत महोत्सव के दौरान नए सब्जी उपयार्ड का उद्घाटन भी करेंगे। इससे पहले गृहमंत्री ने कल अहमदाबाद में नगर निगम के 405 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से अधिक पौधे लगाए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपीटेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग मेघालय सरकार के सहयोग से शिलांग में नेक्स्ट जनरेशन प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधार विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन आज से करेगा। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में इटली के यानिक सिनर ने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर विंबलडन पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। सिनर 100 ग्रैंड स्लैम मैच जीतने वाले एकमात्र इतालवी पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को एकमात्र टेस्ट में 457 रन का लक्ष्य दिया है। तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड ने 6 विकेट पर 130 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन बनाकर घोषित कर दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा। रोज इसी समय हम आपको सुनवाते हैं सकारात्मक भाव के गीत जिसमें जुड़ी होती है प्रार्थनाएं, और इसी भाव के साथ आज मैं आपके साथ अर्चना गोयल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं भगवान की प्रार्थना से, क्योंकि ईश्वर ही वो माध्यम है जो हम सबके जीवन में नई ऊर्जा, नई उम्मीद और नई मुस्कान लेकर आते हैं। तो चलिए सुनते हैं ये गीत।

हरिओम शरण और नंदिनी शरण की आवाज़ में अभी आपने ये भक्ति गीत सुना। दोस्तों, कहते हैं कि हर सुबह हमें ये याद दिलाने आती है कि बीता हुआ कल चाहे जैसा भी रहा हो, आज एक नया अवसर हमारे सामने है और इस नई सुबह में हमें अच्छे अच्छे विचारों को अपनाना है और दिन को खुशहाल बनाना है।

हेमंत कुमार की आवाज में ये गीत था फिल्म काबुलीवाला से। दोस्तों, जीवन में खुश रहने का सबसे बड़ा मंत्र है, जो हमारे पास है उसके लिए आभार व्यक्त करें और जो पाना है उसके लिए पूरे मन से प्रयास करें। आइए इस खूबसूरत सुबह की वो शुरुआत करते हैं एक ऐसे गीत के साथ जो जीवन में नई उम्मीद जगाता है।

गीत के बाद आपका अरुणिमा कार्यक्रम में फिर से स्वागत है। दोस्तों, सुबह केवल घड़ी का एक समय नहीं होती बल्कि सोच बदलने का भी समय होती है। यदि दिन की शुरुआत मुस्कान से हो तो मुश्किल रास्ते भी आसान लगने लगते हैं।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा और मैं हूं आज आपके साथ अर्चना गोयल। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 4:31:34। दोस्तों याद रखिए, सकारात्मक सोच कोई जादू नहीं बल्कि हर परिस्थिति में अच्छाई देखने की आदत है। आज किसी एक व्यक्ति की मदद कीजिए, किसी को मुस्कान दीजिए या किसी का मनोबल बढ़ाइए। यकीन मानिए आपका दिन और भी सुंदर हो जाएगा।

0: दोस्तों, सुबह की ठंडी हवा, चिड़ियों की आवाज़ें और धीमे धीमे अंधेरे का रोशनी में बदलना, यानी आसमान का धीरे धीरे रंग बदलना, ये हमें ये संदेश देता है कि प्रकृति भी बिना थके अपना काम कर रही है। इसलिए हम इंसान को भी लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए।
1: उठे सबके कंधे।

दोस्तों, हमें अपने जीवन में हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि इन बातों से जो खुशी मिलती है वो हमारे अंदर एक प्रेरणा प्रदान करती है, और अक्सर छोटी छोटी खुशियां ही बड़े सुख का आधार होती हैं।

कहते हैं जब सोच अच्छी होती है तो हर दिन अच्छा बन जाता है, और अच्छा दिन बनाने के लिए अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना, कृतज्ञता और मुस्कान के साथ की जाए तो हम बेहतर से बेहतरीन बन सकते हैं। साथ ही भरोसा रखिए ईश्वर पर और कर्म करते रहिए।

पर वक्त है आपसे विदा लेने का। उम्मीद है अरुणमा की ये बातें आपके मन में नया आत्मविश्वास जगाने में सफल रही होंगी। याद रखिए, हर सुबह जीवन हमें एक कोरा पन्ना देती है, उस पर क्या लिखना है ये हमारे हाथ में होता है। इसी सोच के साथ अरुणिमा कार्यक्रम संपन्न करने की मुझे यानी अर्चना गोयल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट नौवहन को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है।

0: ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि होर्मूज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। अमरीकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जलडमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमरीकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। इस तनाव ने क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन्ह शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन्ह शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फॉरेंसिक विशेषज्ञ समूह की बैठक और राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में पहली अंतर्राष्ट्रीय जांचकर्ता अपराध प्रतिस्पर्धा का उद्घाटन करेंगे। श्री शाह कृषि उपज बाजार समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नए सब्जी उपयार्ड का उद्घाटन भी करेंगे। इससे पहले गृह मंत्री ने कल अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है। मंत्रालय के अनुसार प्रतियोगिताएं जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाएंगी। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में इटली के यानिक सिनर ने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर विंबलडन पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी The news read by Abhineet Shukla. New Delhi has reiterated its call for immediate de-escalation of tensions in West Asia region after attack on a commercial ship GFS Galaxy carrying Indian crew members off the coast of Oman yesterday. Condemning the attack, the External Affairs Ministry said that out of 11 Indian nationals on board, 10 have been rescued so far, while one is reportedly missing. The ministry said The Indian Embassy in Oman is closely monitoring the situation.

नमस्कार, सुप्रभात। रात ने धीरे धीरे अपनी चादर समेट ली है और पूरब के आकाश पर सूरज की हल्की सी लालिमा दिखाई देने लगी है। हवा में एक नर्म सी ठंडक है। पेड़ों की पत्तियां जैसे कोई सुबह का संदेश बांट रही हैं। ऐसे ही मौसम में आपके साथ मैं जुड़ी हूं, आपकी अपनी अर्चना गोयल, और आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम भूर सुहानी। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बेहद खूबसूरत पॉजिटिव गीत के साथ।

दोस्तों, सुबह और संगीत का रिश्ता भी कितना खूबसूरत होता है। एक अच्छा गीत जब सुबह सुबह कानों में पड़ता है तो लगता है जैसे मन की खिड़कियां खुल गई हों और ताज़ी हवा सीधे दिल तक पहुंच रही हो। वैसे सुबह हमें बहुत कुछ सिखाती है। कल चाहे दिन कैसा भी रहा हो, सूरज ये कभी नहीं कहता कि कल बादल थे इसलिए आज मैं नहीं निकलूँगा। वो हर दिन आता है अपने पूरे उजाले के साथ।

शायद जिंदगी का सबसे बड़ा संदेश है बीता हुआ कल हमारे आज के उजाले को कम नहीं कर सकता। साथियों, अगर कल कोई बात मन के मुताबिक नहीं हुई, कोई काम अधूरा रह गया या किसी की बात ने मन को उदास कर दिया, तो उसे आज की सुबह पर हावी मत होने दीजिए। आज नया दिन, नई शुरुआत है।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भोर सुहानी। आपने कभी सूरज को बहुत करीब से महसूस किया है? बस कुछ पल खिड़की के पास खड़े होकर, कहीं चाय की केतली से उड़ती भाप, कहीं मंदिर की घंटियां, कहीं दूर साइकिल की घंटी और कहीं कोई माँ अपने बच्चे को जगा रही होती है। यही तो हमारे जीवन की असली तस्वीर है।